जब भी मन अशांत हो, कुछ पल किसी पेड़ के पास बैठ जाइए या खुले आसमान को देखिए, क्योंकि प्रकृति के पास हर उलझन का शांत जवाब होता है। पेड़ों की छांव और मिट्टी की खुशबू से जुड़ना हमारे मन को एक अलग ही सुकून देता है।

दोस्तों, पेड़, नदियां और आसमान कितना कुछ देते हैं हमें। हमसे कुछ मांगते नहीं, बस हमें सींचते हैं। उनके इस उपकार का सबसे अच्छा रिटर्न हमारी देखभाल और सम्मान है। प्रकृति को संरक्षित करना ही उसके प्रति असली कृतज्ञता हम निभा सकते हैं या जाहिर कर सकते हैं। खुली प्रकृति में, खुली वादियों में कुछ जब हम घूमते हैं इस तरह से, तो ऐसा महसूस होता है जिस प्रकार मोर बरसात के समय में नाचता है, झूमता है और गाता है। आप सुन रहे हैं भोर सुहानी अपनी दोस्त रूपा के साथ आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। वक्त हुआ है 5:40 और 44 सेकंड।

सुबह का ताजगी भरा और खूबसूरत ये नज़ारा, और इस समय छोटा मोटा व्यायाम या कसरत करना बेहद फायदेमंद होता है सबके लिए। यानी कभी अपनी साइकिल लीजिए और एक छोटा सा चक्कर लगाकर इस खूबसूरत सुबह का आनंद लीजिए। व्यायाम का व्यायाम और सैर की सैर, यानी एक पंथ दो काज, तो ज़रूर इस खूबसूरत से लम्हे का फ़ायदा उठाइए और छोटा सा ये व्यायाम करेंगे तो देखिएगा कितनी चुस्ती फुर्ती आपके शरीर में दौड़ेगी।

फिर किसी अगले मोड़ पर जरूर मिलेंगे और जल्दी ही मिलेंगे इस वादे के साथ। भोर सुहानी से फिलहाल रूपा विदा लेती है। नमस्कार। सुप्र

0: साथ में नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ताशकंद में उज़्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्ज़ियोयेव के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता राष्ट्रपति भवन में व्यापार और निवेश, रक्षा, डिजिटल संपर्क, ऊर्जा, शिक्षा और दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने जैसे मुद्दों पर सहयोग की समीक्षा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी के स्वागत के लिए ताशकंद शहर में विशेष प्रबंध किए गए थे।
1: पूरा ताशकंद शहर भारतीय झंडों और होर्डिंग से सजा हुआ है। हर कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चौथी यात्रा का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उज़्बेकिस्तान के राष्ट्रपति मिर्ज़ियोयेव सदियों पुराने आपसी संबंधों को और मजबूत करने पर विचार विमर्श करेंगे। दोनों नेता राष्ट्रपति भवन में व्यापार और निवेश, रक्षा, डिजिटल कनेक्टिविटी, ऊर्जा, शिक्षा और जन संबंधों के क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा करेंगे। वे विकसित भारत 2047 और उज़्बेकिस्तान 2030 के साझा विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने पर भी अपने विचार साझा करेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाश।

0: आकाशवाणी समाचार ताशकंद उज्बेकिस्तान।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 137वीं कड़ी होगी। मन की बात का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, एआईआर न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी किया जाएगा। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में भी मन की बात का प्रसारण करेगा। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने विभिन्न स्थानों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए हैं। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल अहमदाबाद में, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा गांधीनगर में और केंद्रीय जलशक्ति मंत्री सीआर पाटिल सूरत में लोगों के साथ मन की बात सुनेंगे। वहीं पार्टी नेताओं की ओर से युवाओं, किसानों, महिलाओं और विभिन्न सामाजिक समुदाय के साथ भी कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज लखनऊ में उद्योग सम्मेलन को संबोधित करेंगे। पीएम सेतु योजना के अंतर्गत आयोजित इस सम्मेलन में कौशल विकास, उद्यमिता और व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित विषयों पर चर्चा होगी। कार्यक्रम से पहले श्री राजनाथ सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुनेंगे। इसके बाद वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में लखनऊ छावनी क्षेत्र में 101 करोड़ रुपए की 12 विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि मुस्लिम को भारत का हिस्सा न मानने की सोच हिंदुत्व की भावना के विपरीत है। न्यूयॉर्क में एक दुनिया एक मानवता सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री भागवत ने कहा कि हिंदुत्व पर हर व्यक्ति के सम्मान और सभी धर्मों के प्रति समान भाव से विश्वास करता है। श्री भागवत ने कहा कि धार्मिक नेताओं की जिम्मेदारी है कि वो समाज में मानव एकता और आपसी सद्भाव का संदेश लगातार पहुंचाते रहें। नेपाल में आई बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 675 हो गई है। लगातार बारिश के बीच राहत और बचाव कार्य जारी है। करीब 2400 लोग अब भी लापता हैं, जिनमें से 320 से ज्यादा विदेशी नागरिक हैं। अब तक 4400 से अधिक लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह ने कहा है कि सरकार की प्राथमिकता हर नागरिक की जान बचाना है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि अब तक 108 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकाला गया है। करीब 50 अन्य भारतीयों से भी दोबारा संपर्क हो गया है। भारत आज महिला क्रिकेट में थाईलैंड के साथ टी20 एशिया कप अभियान की शुरुआत करेगा। भारतीय समय के अनुसार मैच रात 8:30 बजे से खेला जाएगा। हरमनप्रीत कौर भारत की कप्तानी करेंगी, जबकि स्मृति मंधाना उपकप्तान होंगी। मौसम विभाग ने उड़ीसा में अगले 2 दिनों के लिए तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के गंगा के तटवर्ती क्षेत्र में भी आज मूसलाधार बारिश की चेतावनी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: कृपया हमारे विशेष कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है।
1: श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है, यदि व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध हो तो अक्सर छोटे छोटे कर्मों की नैतिक योग्यता भी बड़े बड़े कर्म कर डालने में समर्थ होती है। बुद्धि तो एक तलवार के समान है। जीवन में जो कुछ भी इंसान के सामने आता है उसकी काट छांट करना ही बुद्धि का काम है। इसके विपरीत जब बुद्धि शुद्ध ना हो तब किसी कर्म की नैतिक योग्यता का ज्ञान मनुष्य को नहीं हो सकता। इस तरह बुद्धि के अभाव में अच्छा कार्य भी बुरा बन सकता है।
2: महात्मा गांधी का कहना है,
3: मैं भगवान को मानवता की सेवा द्वारा देखने का प्रयत्न करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ भगवान न ऊपर आकाश में है और न नीचे पाताल में, वो तो सब में है।
4: The best of entertainment, information, education, अब आपके एक उंगली के इशारे पर, कहीं भी कभी भी रहे हरदम अपडेट। आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल। देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन।
4: कोई बोले राम राम।
3: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध।

0: बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट इंफॉर्मेशन एजुकेशन अब आपके एक उंगली के इशारे पर कहीं भी कभी भी रहे हरदम अपडेट आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप
1: बड़ी बहू ये तुम्हारे ना
2: इतनी भी क्या जल्दी थी
1: अरे और छोटी ये तुम्हारे ना
3: और ये
4: मेरी गुड़िया के नाम
5: पर दादी हाँ आपके नाम
6: सब कुछ मैंने बैंक लॉकर फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो
1: शुभ शुभ बोलो क्या
6: आरबीआई कहता है
7: जानकार बनिए सतर्क रहिए
8: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा याद रखें समाधान आपके पास है टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है यहां आपकी बात सुनी जाती है समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है आप अकेले नहीं हैं मदद बस एक कॉल दूर है
0: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात साझा करेंगे तो आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री जी से मन की बात
9: मेरे प्यारे देशवासियों नमस्कार मन की बात के इस नए एपिसोड में आप सभी का मैं एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सब जानते हैं कि एक ऐसा मंच है जहां हम नए प्रयासों को सामने लाते हैं देशवासियों के इनोवेटिव आइडियाज पर चर्चा करते हैं इनमें से कितने ही आइडियाज ऐसे होते हैं जिनके पीछे लोगों ने जीवन की अथक ऊर्जा लगाई होती है साथियों कुछ समय पहले सोशल मीडिया पर किसी ने लिखा था आषाढ़ी एकादशी के पावन अवसर पर मुझे यह बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि इतिहास को रोचक बनाने के अपने प्रयास का शुभारंभ कर रहा हूं उन्होंने आगे बताया यह आइडिया बहुत ही सिंपल है आप इस वेबसाइट पर जाएं और कोई भी एक वर्ष चुन लें यहां आपको आसानी से पता चलेगा कि उस समय भारत के किस हिस्से पर किसका शासन था मुझे भी यह काफी दिलचस्प लगा मैंने सोचा कि इसके बारे में और अधिक जानकारी ली जाए मुझे पता चला कि यह काम मुंबई में रहने वाले श्रीमान कृष्णा शेषाद्री जी ने किया है मजे की बात यह है कि कृष्णा जी ने वेबसाइट का नाम भी बहुत सिंपल रखा है www.bharatrajya.com उन्होंने जो प्रयास किया है उसकी जानकारी आप लोगों तक भी जरूर पहुंचनी चाहिए इसलिए मैंने सोचा कि क्यों न सीधे श्री कृष्णा जी से ही बात की जाए साथियों कृष्णा जी हमारे साथ फोन पर जुड़ रहे हैं कृष्णा जी नमस्ते
10: नमस्ते सर नमस्ते
9: भाई मुझे पता चला है न आप टेक की दुनिया से हो न आप हिस्ट्री टीचर हो फिर भी आपने टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके हिस्ट्री की साइट बना डाली तो मुझे बहुत उत्सुकता है ये सब कैसे हुआ
10: सर धन्यवाद सर आपसे बात करके बहुत मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है तो सर मेरे बारे में अगर मैं थोड़ा बताऊं तो सर मैं एक इंजीनियर था फिर मैंने एमबीए किया फिर मैं मार्केटिंग फील्ड में चला गया लेकिन ये सब जब भी करता था तब भी मेरे को बचपन से इतिहास में हिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट था तो आई ऑलवेज वॉन्टेड टू डू समथिंग ऑन हिस्ट्री हाउ टू मेक इट इंटरेस्टिंग एंड मेरे को ये भी लगता था कि हम जैसे हिस्ट्री सिखाते हैं उसमें हम बहुत इंप्रूवमेंट कर सकते हैं उसमें हम बहुत बदलाव लेके आ सकते हैं हिस्ट्री को एक कहानी बना के लोगों तक पहुंचा सकते हैं
9: कृष्णा जी भारतीय इतिहास का ऐसा कौन सा पहलू है जिसके बारे में आपको लगा कि इसका जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों को होनी चाहिए
10: सर अगर आप भारतीय इतिहास जैसे हमारे स्कूलों या कॉलेजों में सिखाया जाता है जैसे आप देखते हो तो वो एक कोई एक एम्पायर या कोई एक किंगडम उसके दृष्टिकोण से उसके नजरिए से सिखाया जाता है और वो एम्पायर्स को डिस्प्रोपोर्शनेट अटेंशन भी मिलता है इस चक्कर में बाकी के बहुत सारे जो हमारे साम्राज्य थे जो महान साम्राज्य थे जैसे चोलास थे पल्लवास थे तारकोटा डायनेस्टी था कश्मीर में अहोम्स थे जिन्होंने कम से कम 600 साल आसाम में अपनी संस्कृति और अपने वैल्यू सिस्टम को बरकरार रखा ये सब के बारे में हम नहीं जानते। तो मैंने सोचा कि ऐसा कोई एक साइट बनाए जो ऐसे महान साम्राज्य को भी लोगों से इनको इंट्रोड्यूस किया जाए।
9: कृष्णा जी, आप इतनी मेहनत करते हैं, मैं ऐसे ही आपको हाइपोथेटिकल सवाल पूछता हूँ, अगर आपको इंडियन हिस्ट्री के किसी भी तीन लोगों से बातचीत का अवसर मिले तो आप किन से बात करना चाहेंगे और क्यों?
10: हाँ सर, तो पहले मैं बात करूंगा राजराजे चोला या राजेंद्र चोला सर से, जो चोला साम्राज्य के सबसे मोस्ट पावरफुल या सबसे इम्पोर्टेंट राजाओं में से थे। तो मैं उनसे ये जानना चाहूंगा कि पहले उनको ये विजन कैसे आया, जैसे उन्होंने बृहदीश्वर टेम्पल या गंगाईकोंड चोलापुरम के जो बड़े बड़े मंदिर हैं, शिव जी के मंदिर हैं, वो एग्जीक्यूट करने के लिए उनको वो विजन कहाँ से आया, वो प्लानिंग कैसे की, उनको वो थॉट कैसे आया कि हम ऐसा कुछ बना के जाए जो अगले 1000 या 2000 साल तक दूसरे लोगों को प्रेरित कर सके। तो वो मुझे उनसे जानना है। और दूसरी जो पर्सनैलिटी है, ये एक्चुअली मेरे हिसाब से इंडियन हिस्ट्री में एक बहुत अंडररेटेड

0: पर्सनैलिटी है सर, उनका नाम है हेमू। तो हम उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा इंडियन इतिहास में 2 या 3 लाइन पढ़ते हैं। हमको ये नहीं पता है कि वो जो हेमू जो थे सर, वो एक कॉमन मैन थे, साधारण इंसान थे, वो एक व्यापारी थे। उधर से उन्होंने एक एम्पायर खड़ा किया, और वो नॉट ओनली वो एक एम्पायर बिल्डर थे, वो एक मिलिट्री थिंकर भी थे, मिलिट्री जीनियस थे, जिन्होंने अपने करियर में 23 लड़ाइयां लड़ी, उसमें से उन्होंने 22 लड़ाइयां जीती। तो उनका थॉट प्रोसेस कैसा था और कैसे वो एक आम आदमी से एक इतने बड़े राजा बने, वो उनका वो जर्नी मैं जानने की बहुत दिलचस्पी रखता हूँ सर। और तीसरी जो है ये, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी, शी इज अ वुमन सर, त्रिभुवना महादेवी। तो ये जो है एक उड़ीसा में एक किंगडम है जिसका नाम था भौमाकारा डायनेस्टी। तो इनकी भी कहानी बहुत दिलचस्प है। इन्होंने जब 850 के आसपास जो साल में उनके जो नेबर पाला एम्पायर ने इनके एम्पायर पे धावा बोल दिया था सर, और इनके राजा जो इनके हस्बैंड थे वो उस लड़ाई में शहीद हो गए, और इसके वजह से वो एम्पायर बहुत छोटा हो गया और उसके जो सरदार थे, उसके जो लीडर्स थे, वो एम्पायर छोड़ के जाने लग गए थे। तो ये जो त्रिभुवन महादेवी जो लेडी थी, इन्होंने वो सरकार संभाली एंड शी बिकेम वन ऑफ द फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। और उन्होंने सरकार को नॉट ओनली स्टेबिलाईज किया बट इतना उसको पावरफुल बना दिया कि वो अगले 100 साल तक कलिंगा और वो एरिया में राज करते रहे। तो दीज आर 3 इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटीज व्हिच हुम आई वुड लाइक टू मीट इन हिस्ट्री सर।
1: कृष्णा जी, आपको लगता है कि इतिहास को जी रहे हैं, आप पूरी तरह इतिहास में डूब चुके हैं। देखिए, मैंने भी बड़े उत्सुकता के साथ आपकी साइट देखी है, और मुझे सबसे इंटरेस्टिंग ये लगा कि आपकी साइट पर एक ऐसा टैब है जहां लोग करेक्शंस और सजेशन भी दे सकते हैं। ऐसे कंस्ट्रक्टिव फीडबैक के लिए ओपन रहना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्या आपको लोगों से सुझाव मिलना शुरू हुआ है क्या, और आप उन पर कैसे काम करते हैं?
0: हाँ सर, इन लोगों से बहुत सुझाव आते हैं सर। सुझाव 2 प्रकार के आते हैं। एक सुझाव ऐसे आते हैं जो हमको करेक्शन सजेस्ट करते हैं कि इस प्रदेश में, इस टाइम में, इस राष्ट्र में ये राजा थे, या इस टाइम में ये युद्ध हुआ था, तो ऐसे कुछ सजेशंस आते हैं। दूसरे सजेशन आते हैं कि आप इस वेबसाइट में ये फीचर भी डाल सकते हो या वो फीचर भी डाल सकते हो। तो हमको दोनों प्रकार के सजेशन आते हैं। तो जैसे अगर हमको ऐसा एक सजेशन आए कि इस प्रदेश में इस राजा ने इस टाइम पे राज किया था, तो हम वो सजेशन को लेते हैं। तो हमारे जो सोर्सेस है, जैसे हमको किसी ने सजेशन में दिया था कि हमने इंडिया को तो दिखा दिया, अगर प्रदेश के लेवल पे भी दिखा सकते हैं तो और अच्छा होगा, तो हमने वो फीचर इम्प्लीमेंट किया। और फिर हमने दूसरे एक फीचर आया था जिसमें हमने एक ट्रम्प कार्ड जैसा बनाया था, सारे एम्पायर के डेटा स्टेटिस्टिक्स देखे ताकि वो बच्चों तक पहुंच सके। तो किसी ने एक सजेशन दिया था कि उसको आप एक जगह पे लेके आइए ताकि हम सब डाउनलोड करके हम सब शेयर कर सके, तो वो हम फीचर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो हमें जितना जानना इम्पोर्टेंट है कि हम गलती करेंगे, हम क्योंकि हम सर्वश्रेष्ठ नहीं है, और वो जान के ही हमने वो करेक्शन का टाइम लगाया ताकि ये हम सबकी साइट हो, और आगे जाके सारे कॉन्ट्रीब्यूशन के हिसाब से हम एक ऐसा साइट बनाए जो अगले कुछ साल तक इतिहास एक मजेदार सब्जेक्ट बनाए।
1: कृष्णा जी, आपने सचमुच में बहुत बड़ा काम किया है। अच्छा, हिस्ट्री के अलावा आपकी कई सारी हॉबीज होगी, और भी बहुत कुछ करते होंगे आप?
0: नहीं सर, हम थोड़े बोरिंग टाइप आदमी हैं सर। हम टेक्नोलॉजी में बहुत दिलचस्पी रखते हैं और इतिहास में रखते हैं, और जब हम टेक्नोलॉजी और इतिहास मिल गया, इसी में हम डूबे रहते हैं पूरा दिन।
1: चलिए कृष्णा जी, आपको मेरी बहुत बहुत शुभकामना है। आपने एक अच्छी शुरुआत की है, और आपका तरीका भी ऐसा है कि लोग जुड़ेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामना है। साथियों, कृष्णा जी का ये प्रयास सिर्फ इतिहास के विद्यार्थियों को नहीं, ये हम सबको अपने अतीत को रोचक तरीके से जानने में मदद करेगा। आपके पास भी ऐसे प्रयासों के बारे में जानकारी हो तो उसे जरूर शेयर करें। मेरे प्यारे देशवासियों, नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत, ये अभियान इस समय पूरे देश में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसका लक्ष्य बिल्कुल साफ है, नशा मुक्त युवा, ड्रग फ्री इंडिया। बहुत सारे लोग, विशेषकर हमारे युवा, बहुत बड़ी संख्या में इसका हिस्सा बन रहे हैं। आखिर यह भारत के युवाओं की हेल्थ, उनकी हैप्पीनेस और उज्जवल भविष्य के लिए ही हमारा सामूहिक संकल्प है। साथियों, नशे की लत सिर्फ एक व्यक्ति को अपने लपेटे में

आगे आते हैं। नशा मुक्त भारत के लिए क्या आप कोई पावरफुल स्लोगन बना सकते हैं? क्या हमारे यंग म्यूजिशियंस ऐसे सॉन्ग्स बना सकते हैं जिनमें ड्रग फ्री लाइफ का मैसेज हो? क्या स्टूडेंट्स और थिएटर ग्रुप्स दिल को छू लेने वाले शॉर्ट प्ले लिख सकते हैं जिनमें ड्रग्स के खतरों के साथ साथ उनसे बाहर निकलने का रास्ता भी हो? हमारे देश में बेहतरीन कंटेंट क्रिएटर्स की कमी नहीं है। मेरा आग्रह है कि वे अलग अलग भाषाओं में ऐसा कंटेंट बनाएं जिससे इस दिशा में समाज को मदद मिले। आप अपने प्रयासों को हैशटैग के साथ सोशल मीडिया पर भी जरूर शेयर करें। कई बार क्रिएटिव एफर्ट फॉर्मल कैंपेन से ज्यादा असरदार होते हैं। आइए भारत के युवा को नशे से दूर रखने, नशे से मुक्त रखने इस पवित्र कार्य में हम सब अपनी भूमिका निभाएं। आप अपने प्रयास को हैशटैग नशा मुक्त युवा के साथ सोशल मीडिया पर भी जरूर शेयर करें। मेरे प्यारे देशवासियों, अगस्त के महीने में हमें हर तरफ देशभक्ति के अनेक रंग देखने को मिलते हैं। इस समय हर व्यक्ति के मन में राष्ट्र प्रेम की भावना और प्रबल हो जाती है। नेशनल हैंडलूम डे और भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ से लेकर विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस इसे खास बनाते हैं। स्वतंत्रता दिवस और नेशनल स्पेस डे इसके अवसर तो हर देशवासी को गर्व से भर देते हैं। हर घर तिरंगा अभियान इस भावना को और मजबूत करता है। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने से यह साल और भी विशेष बन गया है। इस बार 8 करोड़ से अधिक तिरंगा सेल्फी अपलोड की गई और तिरंगे का ये उत्सव केवल भारत तक ही सीमित नहीं रहा। इस साल सूर्यपथ तिरंगा के जरिए हमारा तिरंगा दुनिया भर की एक अनोखी यात्रा पर निकला। फिजी के सुवा में सूरज की पहली किरण के साथ तिरंगा फहराया गया। इसके बाद एशिया, अफ्रीका, यूरोप और फिर अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को तक इंडियन मिशंस और पोस्ट पर तिरंगा लहराता गया। आप कल्पना कर सकते हैं ये दृश्य कितने अद्भुत रहे होंगे। जैसे जैसे दुनिया भर में सूरज आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे भारतीय तिरंगा भी लहराता गया। ऐसे प्रयास समाज को एक सूत्र में पिरोते हैं। इनसे देश के साथ भी हमारा जुड़ाव और गहरा होता है। इन प्रयासों में शामिल सभी लोगों को मेरी बहुत बहुत बधाई। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे शहरों और कस्बों की सड़कों पर रोज सुबह से शाम तक लाखों महिलाएं अपने अपने काम में जुटी रहती हैं। कोई सब्जी बेचती हैं, कोई फल, कोई चाय का ठेला लगाती हैं, तो कोई फूल, दिए और पूजा की सामग्री बेचती हैं। कई बार बस थोड़ी सी पूंजी की कमी इनके कारोबार को आगे बढ़ने से रोक देती है। लेकिन अब ऐसी लाखों माताओं बहनों को पीएम स्वनिधि योजना से नई ताकत मिल रही है। महिला सशक्तिकरण के इस पहलू की उतनी चर्चा नहीं होती जितनी होनी चाहिए। पीएम स्वनिधि योजना की लाभार्थियों में करीब 46% महिलाएं हैं, यानी देश भर में लगभग 35 लाख महिलाएं इस योजना से जुड़कर अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही हैं। साथियों, गाजियाबाद की बबीता शर्मा जी इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। बबीता जी पूजा की सामग्री का एक छोटा सा स्टॉल लगाती थी। फूल, दिए, अगरबत्ती, नारियल जैसी चीजें बेचकर वो अपने परिवार की आजीविका में हाथ बंटाती थी। मेहनत खूब थी,
लेकिन कारोबार बढ़ाने के लिए पूंजी की जरूरत थी। पीएम स्वनिधि से उन्हें आर्थिक मदद मिली। उन्होंने अपने

स्टॉल पर सामान बढ़ाया, कारोबार का विस्तार किया, ग्राहक बढ़े, आमदनी बढ़ी और धीरे धीरे सड़क किनारे का उनका छोटा सा स्टॉल एक दुकान में बदल गया। साथियों, बेंगलुरु की टीएस निंगम्मा जी की मिसाल भी बहुत प्रेरक है। निंगम्मा जी और उनके पति ने मिलकर इडली, डोसा और सांभार बेचने का छोटा सा काम शुरू किया। काम चल पड़ा, लेकिन इसे आगे बढ़ाने के लिए पूंजी की जरूरत थी। निंगम्मा जी को भी पीएम स्वनिधि से सहयोग मिला। उन्होंने अपनी कार्ट बेहतर की, सामान थोक में खरीदना शुरू किया और मेनू में भी कई नई चीजें जोड़ी। ग्राहक बढ़े, कमाई बढ़ी और परिवार की आर्थिक स्थिति बेहतर हुई। आज वो अपने 3 बच्चों को बेहतर एजुकेशन देने में सक्षम हुई है। साथियों, जब एक महिला का कारोबार बढ़ता है तो उसके साथ पूरे परिवार का भविष्य आगे बढ़ता है। बच्चों की एजुकेशन बेहतर होती है, घर की जरूरतें पूरी होती हैं और महिला के भीतर आत्मविश्वास और मजबूत होता है। यही तो है महिला सशक्तिकरण का एक जीवंत रूप। मैं रेहड़ी पटरी के काम से जुड़ी सभी बहनों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, स्वच्छता की एक बहुत बड़ी खूबी होती है, जब किसी जगह को स्वच्छ रखने का संकल्प वहां के लोगों का अपना संकल्प बन जाता है तो बदलाव केवल साफ सफाई तक सीमित नहीं रहता। इससे उस जगह की पूरी पहचान ही बदल जाती है। देश के अलग अलग हिस्सों में स्वच्छता के लिए ऐसे प्रयास हमें निरंतर प्रेरणा देते हैं। उत्तर प्रदेश के रामपुर में एक गांव है पटवाई। वहां आकाश और रोहन नाम के 2 दोस्तों ने देखा कि उनके आसपास का इलाका गंदगी से भर गया है। बस फिर क्या था, आकाश और रोहन ने कचरे के बैग उठाए और सफाई के लिए निकल पड़े। धीरे धीरे दूसरे युवा भी उनके साथ जुड़ने लगे। एक टीम भी बन गई जिसका नाम है क्लीनअप पटवाई। ये युवा अब तक 4 गंगा घाटों को साफ कर चुके हैं, 1 टन से अधिक प्लास्टिक कचरा हटा चुके हैं। इन्होंने कितने ही तालाबों और सार्वजनिक जगहों की सफाई की है। साथियों, इस बार श्री अमरनाथ जी की यात्रा में भी स्वच्छता और जनभागीदारी की ऐसी ही प्रेरक तस्वीर देखने को मिली। कठिन रास्तों पर हजारों स्वच्छता कर्मी दिन रात सेवा में जुटे रहे। इस वर्ष यात्रा के दौरान 400 मीट्रिक टन से ज्यादा कचरे को कलेक्ट और प्रोसेस किया गया। मुझे इस प्रयास की एक बात विशेष रूप से अच्छी लगी, स्वच्छता के इस अभियान में श्रद्धालु भी भागीदार बने। 16,000 से अधिक यात्रियों ने स्वच्छता का संकल्प लिया। 10,000 से अधिक यात्रियों को रिस्पॉन्सिबल यात्री सर्टिफिकेट भी दिया गया। यहां एक बहुत अनोखा प्रयोग भी हुआ। यात्रा में घोड़ों और खच्चरों के गोबर को बायोगैस में बदला गया और उसी क्लीन एनर्जी से स्वच्छ ज्योत प्रज्वलित की गई। यानी बाबा बर्फानी की इस पवित्र यात्रा में स्वच्छता भी सेवा और आस्था का एक रूप बन गई। साथियों, हमारे गांव हो या शहर, हमारी नदियां हो या तीर्थस्थल, इनकी पहचान हमारे व्यवहार से भी बनती है। और जब स्वच्छता इस व्यवहार में शामिल हो जाती है, उस स्थान की शोभा और बढ़ जाती है। मेरे प्यारे देशवासियों, कभी कभी हमारा एक छोटा सा शौक जीवन में एक बड़ी संभावना का रास्ता खोल देता है। नागालैंड के फेक जिले की वैशालू पुरोजी की यात्रा भी कुछ ऐसी ही है। वैशालू जी किसान परिवार में पली बढ़ी। बचपन से उन्होंने अपने माता पिता को खेती करते देखा था और उन्हें खुद फूलों से बहुत लगाव था। साल 2021 में उन्होंने इसी शौक के साथ छोटे स्तर पर फूल उगाने की शुरुआत की।
धीरे

धीरे उन्हें इसमें एक संभावना दिखाई देने लगी। उन्होंने देखा कि शादी विवाह हो या फिर अन्य त्योहार, फूलों की मांग हमेशा बनी रहती है। वैशालू जी ने अपने इस शौक को आगे बढ़ाने का फैसला किया। इस सफर में उन्हें स्थानीय कृषि विज्ञान केंद्र से फूलों की वैज्ञानिक खेती की ट्रेनिंग मिली। फिर उन्होंने केवल एक चौथाई एकड़ जमीन पर ग्लेडियोलस के हजारों पौधे लगाए। पहले ही प्रयास में 5,000 से ज्यादा फूल खिल उठे। साथियों, ये सफलता वैशालू जी के लिए एक नई शुरुआत बन गई। उन्होंने फूलों की खेती को और आगे बढ़ाया। जो फूल कभी स्थानीय बाजार में रह जाते थे, आज वो नागालैंड से निकलकर दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों तक जा रहे हैं। वैशालू पुरोजी की यात्रा हमें बताती है कि शौक जब मेहनत और सही मार्गदर्शन से जुड़ जाता है तो वह नई संभावनाओं का रास्ता खोल सकता है। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे आसपास ऐसे कई लोग हैं जो एक छोटा सा प्रयास शुरू करते हैं और देखते ही देखते उनका प्रयास बहुत से लोगों के जीवन में बदलाव का रास्ता बना देता है। ओडिशा के देवरीगढ़ में एक गांव है, धोडरो कुसुम। कुछ साल पहले तक इस गांव की मैथिली भुए जी लगभग हर दिन जंगल जाती थी, कभी जलावन की लकड़ी लेने, कभी महुआ और केंदु पत्ता चुनने, तो कभी बांस की कोंपले और दूसरी वनुपज लाने। उनके और वहां के अनेक परिवारों की बहुत सी जरूरतें इसी जंगल से पूरी होती थी। लेकिन फिर मैथिली जी देवरीगढ़ इको टूरिज्म से जुड़ी। यहां से जंगल के साथ उनका रिश्ता एक नई दिशा में बदल गया। अब जंगल का संरक्षण भी उनकी आजीविका का माध्यम बन गया। साथियों, मैथिली जी के जीवन में आए इस बदलाव ने दूसरी महिलाओं को भी प्रेरित किया। आज 60 से अधिक महिलाएं जंगल के संरक्षण में जुड़ चुकी हैं। कोई वन्य जीवों की सुरक्षा का दायित्व संभाल रही है, कोई घास के मैदानों के विकास से जुड़ी है, तो कुछ महिलाएं इको टूरिज्म एक्टिविटीज में योगदान दे रही हैं। साथियों, मैथिली जी और देवरीगढ़ की इन बहनों ने दिखाया है कि प्रकृति की रक्षा भी हो सकती है और जीवन में समृद्धि भी आ सकती है। इन सभी बहनों का प्रयास हम सभी के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। साथियों, आज हमारी बेटियों के सपनों की उड़ान धरती से निकलकर अंतरिक्ष तक पहुंच रही है और आपको यह जानकर गर्व होगा कि भारत ऐसे सपने देखने वाली दुनिया की हजारों बेटियों को एक साथ जोड़ रहा है। इस प्रयास का नाम है मिशन शक्ति सेट। इसके माध्यम से 108 देशों की 12,000 छात्राओं को सैटेलाइट टेक्नोलॉजी सीखने और इनोवेशन के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है। 23 अगस्त नेशनल स्पेस डे पर इस मिशन की एक सुंदर तस्वीर उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में देखने को मिली। गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में मिशन शक्ति सेट के दूसरे चरण की शुरुआत हुई। इस अवसर पर दुनिया के अलग अलग देशों और भारत से आई करीब 100 छात्राएं एक साथ जुटी। भारत के दूर दराज क्षेत्रों से चुनी हुई छात्राएं भी इसमें हिस्सा ले रही हैं। इस पूरे प्रयास का लक्ष्य भी बहुत खास है। पूरी तरह छात्राओं की भागीदारी से तैयार एक सैटेलाइट को मून की ऑर्बिट में भेजने की तैयारी है। साथियों, मुझे विश्वास है कि इनमें से अनेक छात्राएं आने वाले समय में साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के क्षेत्र में अपनी नई पहचान बनाएगी। मेरे प्यारे देशवासियों, आजकल एवोकाडो फल की बड़ी धूम है। इस फल को पहले शायद ही कोई जानता था। इसकी वैल्यू और डिमांड दोनों कम थी, लेकिन आज इसे डाइनिंग टेबल पर खूब देखा जा रहा है। आज यह हेल्थ और प्रीमियम मार्केट की पसंद बन गया है। हमारे किसान भाई बहनों के लिए भी ये बहुत मददगार है। आंध्र प्रदेश में कड़पा के

वरदराज जी का उदाहरण है। वे कई वर्षों से अपने खेत में टमाटर और केले की खेती कर रहे थे। एक दिन उन्होंने अपने दोस्तों के फार्म में एवोकाडो की फसल देखी। इसके बाद उन्होंने यूट्यूब से इस पर जानकारी जुटाई। अब तक वे करीब 4 टन एवोकाडो का उत्पादन कर चुके हैं। आज वे सीधे स्थानीय दुकानों को इसकी सप्लाई कर रहे हैं। नई फसल, वैज्ञानिक सलाह और सीधी मार्केटिंग से उनके छोटे से फार्म की कमाई पूरी तरह बदल गई है। तमिलनाडु के कोडाईकनाल के किसान चंद्रशेखरन जी ने आधी हेक्टर जमीन पर एवोकाडो उगाना शुरू किया। उन्हें इसके अच्छे दाम मिल रहे हैं और कमाई भी बढ़ी है। कर्नाटका में चिकमंगलुरु के कुछ किसान भाई बहनों ने तो कॉफी प्लांटेशन के बीच एवोकाडो लगाया है। इससे उन्हें कॉफी और काली मिर्च के साथ अतिरिक्त कमाई भी हो रही है। साथियों, हम शहरों के रेस्टोरेंट में अक्सर एवोकाडो टोस्ट के बारे में सुनते हैं, लेकिन इसी एवोकाडो के जरिए हमारे इनोवेटिव किसानों ने कमाई की एक नई रेसिपी ढूंढ ली है। यानी अपने देश के एवोकाडो से आपके टोस्ट का स्वाद भी बढ़ा और किसानों की आमदनी भी बढ़ गई है। मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ ही दिनों में 3 सितंबर को हम महानायक उत्तम कुमार जी की जन्म शताब्दी मनाएंगे। साथियों, उत्तम कुमार जी एक वर्सेटाइल एक्टर थे जो अपने अभिनय से लोगों के दिलों में रस बस गए। फिल्म लवर्स का मानना है कि श्रीमान सत्यजीत रे ने फिल्म नायक द हीरो की पूरी स्क्रिप्ट महानायक उत्तम कुमार जी को ध्यान में रखकर लिखी थी। श्रीमान सत्यजीत रे ने कहा था कि उनमें डिग्निटी के साथ साथ अद्भुत इमोशनल डेप्थ भी था। किरदार को वो जीवन बनाने के लिए बहुत मेहनत करते थे। उत्तम कुमार जी अपनी सहजता के साथ ही फिलेंथ्रोफी के लिए भी जाने जाते थे। उनके जीवन से कभी भी हार न मानने की एक और बड़ी सीख भी मिलती है। उनकी शुरुआती फिल्में बहुत नहीं चली, लेकिन उन्होंने अपने काम पर फोकस बनाए रखा। इसी का परिणाम था कि उन्होंने इतनी ऊंचाई हासिल की। साथियों, मुझे ध्यान है कि जब मैं कोलकाता में रोड शो कर रहा था तो मैं उत्तम कुमार जी के घर के सामने से भी गुजरा था। वहां मुझे एक व्यक्ति ने उनकी एक तस्वीर भी भेंट की थी। मैं एक बार फिर महानायक उत्तम कुमार जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। वे हमेशा हम सबके दिलों पर राज करते रहेंगे। महानायक उत्तम कुमार चिरोदिन मानुषे हृदय राज कोरबैन। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे पर्व और त्योहार हमारी परंपराओं के साथ साथ हमें एक दूसरे से जुड़ने का भी अवसर देते हैं। आने वाले दिनों में हम और भी कई महत्वपूर्ण पर्व मनाने जा रहे हैं। 4 सितंबर को जन्माष्टमी का पावन पर्व है। सितंबर में ही हम विश्वकर्मा पूजा भी मनाएंगे। इस अवसर पर अपने आसपास के कारीगरों, शिल्पकारों और विश्वकर्मा साथियों का सम्मान करना चाहिए। कुछ महीनों बाद दीपावली भी आने वाली है। इसकी तैयारियां भी धीरे धीरे शुरू हो रही हैं। त्योहारों के इस मौसम में मैं एक बार फिर आपसे वोकल फॉर लोकल का आग्रह दोहराऊंगा। और वोकल फॉर लोकल का मतलब केवल मिट्टी के दिए खरीदना नहीं है, इसका विजन बहुत बड़ा है। हम अपने घर के लिए जो भी सामान खरीदते हैं उसे एक बार जरूर देख लें कि वो भारत में बना हो। भारत के आत्मनिर्भर बनने का मार्ग भारत में बनी चीजों पर गर्व करने से ही प्रशस्त होगा। इस संदेश को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना भी हमारी जिम्मेदारी है। हमारे क्रिएटिव वर्ल्ड के साथियों, इन्फ्लुएंसर्स और सेलिब्रिटीज की भी इसमें बहुत बड़ी भूमिका

कभी, डियर लिसनर्स, कभी सिर या हम सर में हल्का सा दर्द हो और उसी वक्त दिल बोले कुछ मीठा खिला दो, तो क्या ये सिर्फ आपका मूड है या बॉडी कोई सीक्रेट मैसेज भेज रही है? कई बार है ना, हेडेक और स्वीट क्रेविंग सिर्फ भूख की वजह से नहीं होते। अगर बार बार मीठा खाने का मन कर रहा है तो हो सकता है कि आपकी डाइट में मैग्नीशियम जैसे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कम हो। मैग्नीशियम की कमी मसल टेंशन और हेडेक्स के जुड़ी हो सकती है। वही अगर बॉडी को लगातार एनर्जी चाहिए तो नींद की कमी, मील्स के बीच बहुत लंबा गैप या ब्लड शुगर का उठा चढ़ाव भी क्रेविंग्स बढ़ा सकती है। तो अगली बार हेडेक होते ही सिर्फ चॉकलेट की तरह हाथ बढ़ाने से पहले थोड़ा पानी पीजिए और कुछ न्यूट्रिएंट रिच खाइए, जैसे नट्स, सीड्स, बनाना या डार्क लीफी ग्रीन्स। और हाँ, कभी-कभी मिठाई खाना कोई क्राइम नहीं होती है। आखिर जिंदगी में थोड़ा बैलेंस भी चाहिए और थोड़ा मस्ती भी। तो अब हेडेक को जैसे थोड़े साइड में रखिए, क्रेविंग्स को एक छोटा सा ब्रेक दीजिए और मूड को बनाइए एकदम मस्त।

That was Dance by Chance. This is Akashvani Hyderabad 101.9 FM Rainbow, and we are in Namaste Hello Aadab. Kabhi notice kiya hai दोस्तों कि हम दूसरों को तो बहुत आसानी से बोल देते हैं कि यू कैन डू इट, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, सब ठीक हो जाएगा. लेकिन खुद से ये बातें कहना कितना मुश्किल होता है ना. यही एफर्मेशंस काम आती है. एफर्मेशंस सिर्फ मिरर के सामने खड़े होकर कुछ पॉजिटिव लाइंस रिपीट करना नहीं होता है. ये अपने दिमाग को बार बार वो याद दिलाना का एक तरीका है जो हम स्ट्रेस और सेल्फ डाउट के बीच अक्सर भूल जाते हैं कि हम केपेबल हैं, हम सीख रहे हैं और हर चीज़ का परफेक्ट होना इतना भी ज़रूरी नहीं है. मैं कर सकता हूँ, मैं इनफ हूँ, मैं अपनी पेस पर ग्रो कर रही हूँ. शायद एक बार कहने से कुछ ड्रामेटिक ना बदले, लेकिन जब हम अपने इनर वॉइस को क्रिटिसिज्म से काइंडनेस की तरफ ले जाना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे डिफरेंस बिल्कुल महसूस होता है. आखिर हम पूरी जिंदगी अपने साथ रहने वाले हैं, तो अपने आप से बात करने का तरीका भी थोड़ा प्यारा क्यों ना हो. आज खुद को एक अफर्मेशन दीजिए और कहिए, लव यू जिंदगी.

NFM Rainbow. This is me, RJ Kaivalya. We are in Namaste Hello Adab program where we present you entertainment and fun and music in all three languages, Hindi, English and Telugu. तो कभी सोचा है हमारे वीक में सात ही दिन क्यों होते हैं? दीज आर द थॉट्स वी गेट ऑन अ संडे, राइट? और फरवरी को बाकी महीनों के कंपैरिजन में इतने कम दिन क्यों मिले? इसके पीछे एक पूरी कहानी है. तो दोस्तों, सात दिन का वीक का आइडिया बहुत पुराना है और इसका कनेक्शन एंशिएंट सिविलाइजेशन से लेकर स्काई में दिखने वाले सात सेलेस्टियल बॉडीज तक जाता है. सन, मून और पांच प्लैनेट्स जिन्हें उस व्यक्त नंगी आंखों से देखा जा सकता था. और फिर आती है फरवरी, कैलेंडर की सबसे छोटी सी महीना. इसके कम दिन होने की वजह रोमन कैलेंडर तक जाती है. कैलेंडर को बार बार एडजस्ट किया गया और फरवरी को सबसे छोटा महीना बना दिया गया है. बाद में लीप ईयर का जुगाड़ भी इसी में किया गया ताकि कैलेंडर और अर्थ की एक्चुअल जर्नी अराउंड द सन के बीच बैलेंस बना रहे. कितनी अजीब बात है ना, हम अपनी जिंदगी को डेट्स और डेज में नापते हैं लेकिन इन नंबर्स के पीछे हजारों साल की कहानी छुपी हुई है. तो अगली बार कैलेंडर देखिए तो सिर्फ तारीख मत देखिए, थोड़ी हिस्ट्री भी पढ़ लीजिए. और अब इस कहानी को थोड़ा म्यूजिक में बदलते हैं और सुनते हैं दिलदारा दिलदारा फ्रॉम रावण.

0: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
1: पुतला बोल रहे?
0: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
1: मतलब?
0: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछ ना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग। अरे पहली वाली बात कहाँ,
1: पर हम तो सब यही डाले हैं।
0: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, पर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
1: सच है?
0: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
1: ठीक है भाई, मैं भी आज के जैविक खेती शुरू करूंगा।
2: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।

ये आकाशवाणी हैदराबाद है, FM 101.9 MHz पर। अभी आप मेरी रेडियो साथी अनुषा से रिमझिम हैदराबाद सुन रहे थे। समय स्टूडियोज की घड़ी में रात के 9:30 और 22 सेकेंड हुआ चाहते हैं। पेशे खिदमत है उर्दू प्रोग्राम नैरंग।

0: ऐसा है जो इंसान को दुनिया में इज्जत और आखिरत में कामयाबी अता करता है।
1: सामाइन, अभी आप हरफ ताबिंदा समाप्त कर रहे थे। तहरीर व पेशकश सबिहा बानो की थी। सामाइन, बज़्म नैरों को जय रखते हुए आइए सुनते हैं गीत सुरीले गाते जा के तहत वादा उन्वान पर पेशकश। वादा सिर्फ एक लफ्ज़ नहीं बल्कि एक पूरा फ़लसफ़ा है जो इंसानी रिश्तों, मुरवजा अखलाकियात और तालीमात को एक कड़ी में पुरोता है। किसी से ज़बान देना या अज़म का इजहार करना ऐसा फ़र्ज़ है जिसे चुकाना हर बाज़ अमीर इंसान पर फ़र्ज़ होता है। वादा खिलाफ़ी एक अखलाकी और समाजी बुराई है, जबकि वादे की पासदारी, ईफाए अहद इंसानी किरदार की अजमत की सबसे बड़ी अलामत है।

किसी शायर ने क्या खूब कहा है, वो उम्मीद क्या जिसकी वो इंतहा, वो उम्मीद क्या जिसकी हो इंतहा, वो वादा नहीं जो वफा हो गया। इंसानी माशरा बाहमी भरोसे एतमाद की बुनियाद पर कायम है। इस एतमाद को बरकरार रखने में सबसे अहम किरदार वादा अदा करता है। वादे से मुराद किसी काम को करने या ना करने का ऐसा पक्का अजम जो एक इंसान

दूसरे इंसान से करता है। जब कोई शख्स किसी से वादा करता है तो वो दरअसल अपनी जबान, अपनी किरदार, अपनी साख को दांव पर लगा देता है। यही वजह है कि अहद की पाबंदी को हर दौर, हर मज़हब, हर ज़बानें, हर तहजीब में इंसानियत का बुनियादी उसूल माना गया।

मोहब्बत और वादा एक अनमोल रिश्ता। इंसानी जज्बों में मोहब्बत सबसे पाकीज़ा और ताकतवर जज्बा है, लेकिन मोहब्बत को दवाम और पुख्तगी तब मिलती है जब इसमें वादे की ताकत शामिल हो जाए। वादा दरअसल मोहब्बत का अमली सबूत है। जब कोई किसी से सच्ची मोहब्बत करता है तो वो जबान से या खामोशी से एक अहद करता है, साथ निभाने का, दुख सुख में शरीक होने का, हर हाल में वफादार रहने का। बगैर वादे और बगैर अज़्म के मोहब्बत महज एक आर्जी कशिश बनकर रह जाती है। गज़ब किया तेरे वादे पे एतबार किया, गज़ब किया तेरे वादे पे एतबार किया, तमाम रात ख़यामत का इंतज़ार किया। मोहब्बत में वादे की अहमियत। मोहब्बत में वादा कोई क़ानूनी मायदा नहीं, बल्कि ये दिल का एक ऐसा मामला है जिसमें इंसान अपनी ज़ात को दूसरों के हवाले कर देता है। मोहब्बत का पूरा महल भरोसे अहद व पैमा पर क़ायम होता है। जब कोई अपने किए गए वादों पर पूरा करता है तो महबूब के दिल में इसकी इज्जत, हुरमत, मोहब्बत दुगनी हो जाती है। सबूत यह है मोहब्बत की सादा लोही का, सबूत है ये मोहब्बत की सादा लोही का, जब इसने वादा किया हमने एतबार किया। तहफ़ुज के एहसास का वादा। सच्चा वादा इंसान को एक जहनी जज्बाती तहफ़ुज इत्मीनान देता है कि बदलते हालात, वक्त के थपेड़ों में कोई है जो इसका हाथ थामे रखेगा।

0: अभी आप गीत सुरीले गाते जा के तहत वादा उन्वान और इसके अलावा जबरी तौर पर लापता किए गए अफराद के मुतासरीन का बैनुल अक्वामी कौमी दिन उन्वान पर हमने फिल्मी नगमे सुने। समय बज़्म नरम को जाए रखते हुए आइए सुनते हैं रेडियो रिपोर्ट। ये रेडियो रिपोर्ट मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़िमन में दारुसलाम दफ्तर AIMIM हैदराबाद के तहत मुनक्किदा प्रोग्राम की तफसील और उसके रिपोर्टाज पर मबनी है। आइए सुनते हैं रेडियो रिपोर्ट मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।
1: बिस्मिल्लाह रहमान रहीम नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। सामईन कराम, आप समाअत फरमाएंगे एक रूह परवर और ईमान अफरोज़ खसूसी प्रोग्राम जिसमें हम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं कुल हिंद नातिया मुशायरे की रेडियो रिपोर्ट। ये बाबरकत प्रोग्राम बरोस चहारशंबा 26 अगस्त सन 2026 ईस्वी मुताबिक 12 रबीउल अव्वल 1448 हिजरी बाद नमाज इंशा दारुसलाम ग्राउंड आगापुरा हैदराबाद में मुनक्किद हुआ। ये अजीमुशान नातिया मुशायरा नखीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवेसी साहब सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व मौजिस रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद की जेर निगरानी मुनक्किद हुआ। आइए इस बाबरकत महफिल का आगाज अल्लाह रब्बुल इज्जत के कलाम पाक से करते हैं। खिरत कलाम पाक पेश करने की सआदत हासिल की जनाब खारी मलिक इस्माइल अली खान।

0: तू सरकार है मेरे, दुआलम में वही तो मालिको मुख्तार है मेरे।
1: सुभान अल्लाह।
0: भरोसा है खुदा पर और नबी की शान रहमत पर, भरोसा है खुदा पर और नबी की शान रहमत पर, अजल से ताबद ये दोनों पालनहार हैं मेरे। जरा कश्ती ये दिल उनके हवाले करके देखो तो, जो महबूब खुदा हैं वो ही खेवनहार हैं मेरे। सरे महशर कहेंगे देखकर सब कमली वाले को, बसे हैं जो मेरे दिल में वही दिलदार हैं मेरे। कोई रुतबा नबी का जान सकता ही नहीं हरगिज, कोई रुतबा नबी का जान सकता ही नहीं हरगिज, सिपा सालार रब हैं दीन के सरदार हैं मेरे। अब तक आपसा कोई हसीन हरगिज ना आएगा,
1: वाह।
0: अब तक आपसा कोई हसीन हरगिज ना आएगा, है वो सुल्तान खूबां रब का एक शाहकार है मेरे।
2: जनाब सिकंदर आगाई साहब के नातिया कलाम के बाद मुखामी शायर डॉक्टर फारूख शकील साहब ने अपना कलाम पेश किया।
3: तैबा जिसे कहते हैं वो शहर नबी का है,
1: वाह।
3: तैबा जिसे कहते हैं वो शहर नबी का है,

0: खिलाफ आपके एक लफ्ज भी कबूल खिलाफ आपके एक लफ्ज भी कबूल काबे पे जिस घड़ी मेरी पहली नजर गई
1: सुभान।
0: और शेर सुनिएगा नेताब साहब अफजल भाई।

0: की रोशनी मेरे दिल में उतर गई।
1: जनाब अजीम दिवासी साहब मेहमान शायर के बाद निजामत के फराइज अंजाम दे रहे जनाब सरदार सलीम साहब जो मोतमद मुशायरा भी हैं अपना कलाम पेश किया।
0: चारों दिशाएं सलाम करती हैं, अदब से चारों दिशाएं सलाम करती हैं, बलाएं लेके बलाएं सलाम करती हैं, बलाएं लेके बलाएं सलाम करती हैं, दिया जलाया है।

0: पढ़ते हुए, दिया जलाया है मैंने दुरूद पढ़ते हुए, मेरे दिए को हवाएं सलाम करती हैं। अल्लाह सलामत रखे आपको। दिया जलाया है मैंने दुरूद पढ़ते हुए, मेरे दिए को हवाएं सलाम करती हैं। जश्न मीलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इशारा है। बारहवीं है चांद की और आमदे सरकार है, बारहवीं है चांद की और आमदे सरकार है। रोशनी की जीत है, तारीकियों की हार है। रोशनी की जीत है, तारीकियों की हार है। आगे मुलाहजा करें, आज हक शाद है, कुफ्र नाशाद है। जश्न मीलाद है, जश्न मीलाद है। आज हक शाद है, कुफ्र नाशाद है। जश्न मीलाद है, जश्न मीलाद है। आज रखी गई पहली बुनियाद है, जश्न मीलाद है, जश्न मीलाद है।
1: इसके बाद जनाब अफजल इलाहाबादी साहब ने नातिया कलाम पेश करने की सआदत हासिल की।

0: क्या बात।
1: मेहमान शायर जनाब वारिस वारिसी साहब को अभी आप सुने। समय निकाम इसके बाद और एक मेहमान शायर जनाब जिया टोन की अपना कलाम पेश किया।
2: यहाँ का जीना तो बेकसी है,
0: सुभान अल्लाह।

कैसे कहें कि तुझको भी हमसे है वास्ता कोई, तूने तो हमसे आज तक कोई गिला नहीं किया। रिश्तों को सिर्फ दिल में रखने के बजाय उनका इजहार भी जरूरी है। खामोशी बाज़ औक़ात मोहब्बत से ज्यादा बेरुखी का तासुर देती है। अगर किसी से ताल्लुक हो, उसकी फिक्र हो या उससे तवक्कयात वाबिस्ता हो, तो मुनासिब अंदाज में अपने जज्बात का इजहार करना चाहिए। रिश्ते सिर्फ दिल में नहीं, रवैयों और अल्फाज में भी नजर आने चाहिए। मोहब्बत, ताल्लुक और खुलूस का इजहार करते रहो, क्योंकि मुसलसिल खामोशी कभी कभी फासले पैदा कर देती है। गिला हमेशा दुश्मन से नहीं किया जाता, बल्कि अक्सर वही शख्स शिकायत करता है जिसके दिल में ताल्लुक और अपनाइयत होती है। इसीलिए अपने अजीज रिश्तों की कदर करो और उनसे राबता व इजहार बरकरार रखो।

अभी आप बया में शब्द समाप्त फरमा रहे थे। तहरीर व पेशकश जनाब जैदी की थी। सामाइन, इसी के साथ ही आज की बज़्म नेरंग इख्तिताम को पहुंचती है। कल रात 9:30 पर बज़्म नेरंग में हमारी दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। शब बख़ैर, आदाब।

ये आकाशवाणी हैदराबाद है, FM 101.9 MHz पर। स्टूडियोज की घड़ी में रात के 11 बजने ही वाले हैं। थोड़ी ही देर में हिंदी समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी खबरें आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। भारत और उज्बेकिस्तान ने आपसी संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का फैसला किया है। उज्बेकिस्तान भारत को यूरेनियम की दीर्घकालिक आपूर्ति के लिए रूपरेखा तय करने और दुर्लभ खनिजों के खनन स्थलों पर चर्चा करने के लिए भी सहमत हुआ है। दोनों देशों ने आज खनन, आयुर्वेद, पर्यटन, आर्थिक और वित्तीय संवाद, व्यापक और रणनीतिक साझेदारी, उच्च शिक्षा और पर्यावरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के बीच द्विपक्षीय वार्ता के दौरान उज्बेकिस्तान में पढ़ाई के लिए जाने वाले भारतीय युवाओं के हित में और सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रमों के लिए कई उपायों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद और अलगाववाद कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर अमल करते हैं।
1: दोनों देशों के बीच करीबी रक्षा और सुरक्षा सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास को दर्शाता है। आने वाले समय में हम दोनों देशों की डिफेंस इंडस्ट्रीज के बीच डायरेक्ट लिंकेज, को प्रोडक्शन और को डेवलपमेंट को बढ़ावा देंगे। हमारा मानना है कि टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म और सेपरेटिज्म पूरे क्षेत्र के लिए गंभीर चुनौती है। इनके विरुद्ध जीरो टॉलरेंस हमारा साझा संकल्प रहा है और आगे भी रहेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों ने आपसी

0: बंदों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का फैसला किया। प्रधानमंत्री मोदी को उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान ओली दराजली दुस्तलेक ऑर्डर भी प्रदान किया गया। ये विदेशी नेताओं को प्रदान किया जाने वाला उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान है। श्री मोदी ने इस सम्मान को सभी भारतीयों को समर्पित किया और कहा कि ये दोनों सभ्यताओं के बीच चिरस्थायी मैत्री का प्रतीक है। इसके बाद श्री मोदी ने ताशकंद में पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने ताशकंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ ओरिएंटल स्टडीज में महात्मा गांधी सेंटर का दौरा किया। श्री मोदी ने भारतीय विशेषज्ञों और छात्रों से बातचीत भी की। उज्बेकिस्तान की सफल यात्रा के बाद श्री मोदी किर्गिस्तान की 2 दिन की यात्रा के लिए बिश्केक पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में शामिल होने के अलावा कई सदस्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। भारत के लिए नशा मुक्त युवा अभियान पूरे देश में तेजी से आगे बढ़ रहा है और बड़ी संख्या में युवा इस अभियान में शामिल हो रहे हैं।
1: नशा मुक्त भारत के लिए क्या आप कोई पावरफुल स्लोगन बना सकते हैं? क्या हमारे यंग म्यूजिशियंस ऐसे सॉन्ग्स बना सकते हैं जिनमें ड्रग फ्री लाइफ का मैसेज हो? क्या स्टूडेंट्स और थिएटर ग्रुप दिल को छू लेने वाले शॉर्ट प्लेज लिख सकते हैं जिनमें ड्रग्स के खतरों के साथ साथ उनसे बाहर निकलने का रास्ता भी हो? हमारे देश में बेहतरीन कंटेंट क्रिएटर्स की कमी नहीं है। मेरा आग्रह है कि वे अलग अलग भाषाओं में ऐसा कंटेंट बनाएं जिससे इस दिशा में समाज को मदद मिले।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से 35 लाख महिलाओं को नई शक्ति प्राप्त हो रही है। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 781 हो गई है। नेपाल सरकार ने भोटे कोशी नदी में बाढ़ को लेकर अलर्ट जारी किया है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि बाढ़ के बाद नेपाल में अब तक 149 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। पहले लापता करीब 50 भारतीय नागरिकों से फिर संपर्क हो गया है। 275 भारतीय नागरिक अभी भी लापता हैं, वहीं 128 भारतीय मूल के लोग भी लापता हैं। जर्मनी ने स्पेन को 1-0 से हराकर पुरुष हॉकी विश्व कप का खिताब जीत लिया है। बेल्जियम में खेले गए फाइनल मुकाबले के 44वें मिनट में जर्मनी के मिशेल स्ट्रोथॉफ ने एकमात्र गोल किया। इससे पहले आज तीसरे स्थान के लिए मैच में अर्जेंटीना ने नीदरलैंड्स को 2-1 से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by Reshma Tiwari. India and Uzbekistan today decided to elevate their bilateral relationship to comprehensive strategic partnership. The two countries have also agreed to establish a long-term arrangement for the supply of uranium from Uzbekistan to India. Both sides have also set a target of increasing annual bilateral trade to $5 billion by 2030. The decisions were taken following delegation-level talks between Prime Minister Narendra Modi and Uzbekistan President Shavkat Mirziyoyev in Tashkent. The two leaders witnessed the exchange of 11 Memoranda of Understanding, MOUs, aimed at expanding bilateral cooperation across key sectors, including mining, culture, education, tourism, economic and financial dialogue, and Ayurveda. In his remarks during the talks, Prime Minister Modi said a stronger India-Uzbekistan partnership would be a powerful force for peace, progress and prosperity in Central Asia. Later, at a joint press conference with the Uzbekistan president, Prime Minister Modi said maintaining a zero-tolerance policy towards terrorism, extremism and separatism will remain their shared resolve.
3: दोनों देशों के बीच करीबी रक्षा और सुरक्षा सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास को दर्शाता है। आने वाले समय में हम दोनों देशों की डिफेंस इंडस्ट्रीज के बीच डायरेक्ट लिंकेज, को प्रोडक्शन और को डेवलपमेंट को बढ़ावा देंगे। हमारा मानना है कि टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म और सेपरेटिज्म पूरे क्षेत्र के

0: Good evening, listeners, and welcome to this Sunday edition of Market Mantra. Today, we'll be taking your calls on mutual fund-related queries. But do remember that we do not address fund-specific queries. To connect with us, you can call us on 2331-4444, 2331-0481, and 2371-7106. And of course, do prefix the code 011. I'm Sarabjeet Kaur, along with my co-anchor, Subodh Mishra.
1: धन्यवाद सरबजीत और नमस्कार श्रोताओं. कारोबारी खबरों के साथ मार्केट मंत्र हाजिर है. आज रविवार है और हर रविवार की तरह आज भी हम म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके सवालों के जवाब देंगे. सवाल पूछने के लिए आप इन नंबरों पर फोन कर सकते हैं 2331-4444, 2331-0481 और 2371-7106. श्रोता इससे पहले स्टडी कोड 011 भी डायल करें. आज की खबरों पर चर्चा करने और श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है म्यूचुअल फंड्स एक्सपर्ट आशुतोष गुप्ता. आशुतोष, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है.
2: जी, धन्यवाद.
1: पहले हेडलाइंस के साथ सरबजीत कौर.
0: इंडिया एंड उज़्बेकिस्तान

0: Pakistan elevate ties to comprehensive strategic partnership, set bilateral trade target of $5 billion by 2030. Foreign portfolio investors infuse over 30,000 crore rupees into Indian equities in August so far. And in bullion market, gold and silver prices snap 3-week rising streak.
1: भारत और उज्बेकिस्तान ने अपने संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी में बदला 2030 तक 5 अरब डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार का लक्ष्य विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने अगस्त में अब तक भारतीय शेयर बाजार में 30,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया और सर्राफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में 3 सप्ताह पुरानी तेजी टूटी

0: And before we go just any further in the program, may we once again remind our dear listeners that the views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We also advise our listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision. And Subodhji, I see our first caller has already connected with us from Uttar Pradesh. Vivek ji, swagat hai aapka, sawal poochhe.
1: मार्केट इंडा टीम और एक्सपर्ट को नमस्कार
0: जी. नमस्कार.
1: मैं एसआईपी के द्वारा एटीएम से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड हूँ 8 years से और मेरे पास एक लमसम अमाउंट है और मैं इसे इन्वेस्ट करना चाहता हूँ एसटीपी के माध्यम से 12 किस्तों में 12 महीनों में मैं इसे स्प्रेड कर लगाना चाहता हूँ और मैं एक एग्रेसिव इन्वेस्टर के रूप में इसको इन्वेस्ट करना चाहता हूँ. इसमें मैं एक फ्लेक्सी कैप, एक मल्टी कैप, एक वैल्यू फंड और एक मिड कैप और एक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ऐड करना चाहता हूँ. कृपया मुझे बताइए मैं इसमें कितना कितना पोर्टफोलियो में कितना परसेंटेज रखूँ और जो अदर है मिड कैप स्मॉल कैप इसमें कितना रेशो रखूँ. अलग अलग मुझे थोड़ा गाइड करें कि मुझे कितना अमाउंट स्प्रेड कर कितना परसेंटेज इसमें लगाना चाहिए और मैं लॉन्ग टर्म के लिए लगाना चाहता हूँ 7 से 10 years के लिए.
2: जी, तो देखिए कोई इसका बहुत डिफाइंड फॉर्मूला नहीं है लेकिन आपने बताया कि आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं तो आप जैसे एक मल्टी कैप, एक फ्लेक्सी कैप, एक वैल्यू फंड का आप चुनाव करने में इच्छुक हैं. थोड़ा बहुत मिड कैप और स्मॉल कैप एक्सपोजर आपको इन फंड से भी मिल सकता है और उसके अलावा अगर आप 15% अपना पैसा एक डिफाइंड फोकस्ड मिड कैप फंड और एक स्मॉल कैप फंड में अगर लगाते हैं और बचा हुआ पैसा अगर आप अपना फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप इन टाइप की कैटेगरीज में लगाते हैं तो देखिए मोटा मोटा एसेट एलोकेशन कुछ ऐसा रहेगा. आपका 15% डेडिकेटेड मिड कैप और स्मॉल कैप आपके इन फंड्स से मिलेगा और फ्लेक्सी कैप और जो मल्टी कैप फंड्स हैं इनमें भी आप लगाएंगे इनसे भी आपका कुछ मिड कैप स्मॉल कैप कंपोनेंट बनेगा. तो करीब 45-50% शायद आपका पैसा इन छोटी कंपनीज के शेयर्स में निवेशित रहेगा बचा हुआ लार्ज कैप में. तो आई थिंक एक फेयरली एग्रेसिव पोर्टफोलियो रहेगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए.
0: All right, after that advice, let's take a deep dive into the big news of the day. India and Uzbekistan today announced to elevate their mutual strategic partnership to comprehensive strategic partnership level. The Central Asian country also agreed to establish a framework for long-term supply of uranium to India and discuss the sites of the mining for rare earth minerals. Our correspondent reports that on the second day of his visit, Prime Minister Narendra Modi held a bilateral meeting with President Shavkat Mirziyoyev of Uzbekistan and both sides reviewed the entire spectrum of bilateral relations. Both countries signed 11 memoranda of understanding in various sectors including mining, economic and financial dialogue and tourism among others.
3: इस वर्ष हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के 15 साल हो रहे हैं. इस विशेष अवसर पर हमने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है. आज हमने हमारी साझेदारी के इस नए स्वरूप में तेज गति और ठोस परिणामों के साथ आगे बढ़ने का एम्बिशियस एजेंडा तैयार किया है. हमारा द्विपक्षीय व्यापार $1 बिलियन पार कर चुका है. अब हमने 2030 तक $5 बिलियन व्यापार का लक्ष्य रखा है. इसके लिए हम मार्केट एक्सेस, कनेक्टिविटी, बैंकिंग और पेमेंट जैसे जुड़े विषयों पर व्यवस्थागत रूप से आगे बढ़ेंगे.
0: The talks between both sides focused on expanding cooperation in the areas of trade and investment, agriculture, pharmaceuticals and digital public infrastructure, among others. An important commercial agreement was done to enable UPI

0: expand their businesses, increase their exports to different countries. Bilateral agreements like these help open up market access for Indian businesses across the globe. Indian companies may not, you know, remain dependent on one or two economies or one or two geographies, and that is the whole idea, to broad base the business opportunities for Indian businesses, and agreements like these contribute to that. And a pass-through effect of this would land on the retail investors, because as businesses grow, they become more profitable, their values appreciate, their stock price appreciate, and in the long term, equity investors end up being the beneficiaries in an indirect way. So clearly there is positivity, and a long-term impact should be positive for retail investors as well.
1: Sir Abhijit ne abhi ab videshon ki baat shuru kar di hai, aur jab charcha isi par hai, to mujhe abhi kuch samay pehle ki baatein bhi yaad aane lagi, jab hum baat kar rahe the ki videshi funds mein hum kaise nivesh karein, aur kai shrota is par aksar sawal poochte rehte hain, aur samay samay par jab mauka milta hai, jab खुलता है कहीं किसी फंड में निवेश का मौका मिलता है, तब कुछ लोग बहुत प्रॉम्प्टली उसमें निवेश भी कर रहे होते हैं. आशुतोष, अगर जब कभी ऐसा अवसर आता है, आरबीआई की लिमिट कहीं पर मिलती है हमें, जब निवेश करने का मौका आता है, तो एक आम निवेशक को अपने पोर्टफोलियो का कितना प्रतिशत किसी ऐसे बाजार में, अमेरिका के या यूरोप के या एशिया के दूसरे बाजारों में एक्सपोजर वाले फंड्स में लगाना चाहिए?
0: तो देखिए, थोड़ा सा शायद मैं ये कहूँगा कि आपके स्केल पे डिपेंड करता है. अब आप बहुत छोटे निवेशक हैं तो आप कीप इट सिंपल, एक या दो डाइवर्सिफाइड फंड से आपका काम हो जाता है. कोशिश करिए वो ऐसा कोई आपको अच्छा फंड ले जो खुद ही थोड़ा सा इंटरनेशनल एक्सपोजर लेता हो. कुछ एक ऐसे फंड हैं जिनमें आपको ये एक्सपोजर मिल जाता है. लेकिन अगर आपका एक अच्छे स्केल का निवेश करते हैं आप, तो ये एक बुरा सुझाव नहीं है कि आप एक इंटरनेशनल एक्सपोजर अपने पोर्टफोलियो में डेडिकेटेड वे में क्रिएट करें. मेरे हिसाब से आप कम से कम 15% अपना पैसा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इस तरह से टारगेट करें कि आप विदेशी बाजारों में लगाएं. लेकिन अभी वो एवेन्यूज म्यूचुअल फंड सेगमेंट में बहुत लिमिटेड हैं. थोड़ा स्टॉप गैप अरेंजमेंट है आरबीआई की लिमिट्स की वजह से. अभी आप बहुत ज्यादा निवेश बाहर कर नहीं पाते हैं म्यूचुअल फंड के जरिए. तो आप जो बाकी एवेन्यूज हैं उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं.
1: जी, बाकी एवेन्यूज में क्या क्या है?
0: बाकी एवेन्यूज में जो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए एक वायबल ऑप्शन है, वो है गिफ्ट सिटी, जहां पे हालांकि अभी भी टिकट साइज थोड़े ज्यादा हैं, लेकिन जानकारी का अभाव, क्योंकि बाहर के बाजारों का आपको जब तक जानकारी नहीं है तो आप जोखिम भरा इन्वेस्टमेंट बिना जानकारी के करेंगे. उससे बेहतर है कि आप गिफ्ट सिटी के थ्रू, आप जैसे म्यूचुअल फंड्स होते हैं वैसे गिफ्ट सिटी में आउटबाउंड फंड्स आपको मिल जाते हैं, उनके जरिए आप निवेश कर सकते हैं.
1: हम श्रोताओं को याद दिला दें सरबजीत कि आज हम म्यूचुअल फंड्स पर आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं, और सवाल पूछने के लिए आप इन नंबरों पर फोन कर सकते हैं, 2331-4444, 2331-0481 और 2371-7106 आपके सवालों के जवाब देने के लिए. म्यूचुअल फंड्स एक्सपर्ट आशुतोष गुप्ता स्टूडियो में मौजूद हैं. चले हम अगली खबर की ओर. विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों यानी एफपीआईज ने अगस्त में अब तक भारतीय शेयरों में खरीदारी कायम रखी है. ताजा आंकड़ों के अनुसार एफपीआई ने इस महीने अब तक भारत के शेयर बाजार में 30,919 करोड़ रुपए का निवेश किया है. कुल निवेश में से 18,791 करोड़ रुपए स्टॉक एक्सचेंजों पर खरीदारी के माध्यम से आए, जबकि 12,128 करोड़ रुपए प्राथमिक बाजार के माध्यम से निवेश किए गए. जुलाई में तेज हुई खरीदारी की गति अगस्त में भी जारी रही, जिससे मजबूत बुनियादी आंकड़ों और तिमाही आमदनी के साथ साथ रुपए के स्थिरता से भी समर्थन मिला. इस बीच ऋण बाजार में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के रुख में मिला जुला रुझान है. अगस्त में अब तक एफपीआई ने वीआरआर से 289 करोड़ रुपए का निवेश किया है. इसी अवधि में एफएआर के माध्यम से 627 करोड़ रुपए आए, और इसके उलट जनरल लिमिट रूट से एफपीआईज ने 2,318 करोड़ रुपए भारतीय बाजारों से निकाल लिए हैं. एफपीआई के आंकड़े तो हमेशा हम बताते रहते हैं, हर हफ्ते बताते रहते हैं, कभी आ रहे होते हैं पैसे और कभी जा रहे होते हैं, हालांकि अभी काफी समय से काफी पॉजिटिव है. और इसके अलावा अगर हम अपने बाजार पर गौर करें आशुतोष, तो क्या लगता है

0: अब हम हमारी निर्भरता शायद बहुत हद तक कम हो गई है।
1: जी, पिछले 8-10 साल में अगर आप देखेंगे तो काफ़ी कम हुआ है, काफ़ी फर्क पड़ा है। और इसका श्रेय जाता है भारतीय रिटेल इन्वेस्टर्स को, क्योंकि उनका जो पैसा SIP के जरिए लगातार भारतीय बाजार में लगता रहता है, तो जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो काफ़ी काउंटर वेट अब दे पाते हैं FII इन्वेस्टमेंट को। पहले FII का पैसा जब आता था या जब जाता था, उसके हिसाब से बाजार में काफ़ी भारी उतार चढ़ाव देखा जाता था, लेकिन अब एक उसका स्टेबलाइजिंग फैक्टर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बन गए हैं। और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास से पैसा और किसी का नहीं, रिटेल इन्वेस्टर्स का ही है, जो SIP के माध्यम से
0: जा
1: आज
0: रहा
1: की
0: है
1: डेट
0: जी।
1: में करीब 30,000 करोड़ रुपए प्रति माह जो एक स्टेबिलिटी के साथ भारतीय बाजार में लगता चला जा रहा है, तो ये मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा काउंटर वेट प्रदान करता है FII के उतार चढ़ाव को।
2: आशुतोष, वील कम बैक ऑन दैट। मीनवाइल लेट्स आस्क पंकज फ्रॉम कोलकाता, व्हाट्स हिज क्वेश्चन?
0: पंकज स्वागत है आपका, सवाल पूछें।
3: नमस्कार
0: नमस्कार
3: जी, मेरा प्रश्न ये है कि मैंने करीब 2 साल पहले इस SBI इक्विटी हाइब्रिड फंड नाम से मैंने उसमें SIP स्टार्ट किया था। तो करीब 2 साल पहले, 2 साल से मैं चला रहा हूँ, लेकिन अभी तक जो है मतलब कुछ रिटर्न कुछ खास ऐसा दिख नहीं रहा है। तो क्या ये सही टाइम है कि मतलब अभी निकल जाऊं या अभी हमें वेट करना चाहिए?
1: देखिए, डिपेंड करता है कि अगर आपने आपको इस पैसे की अगर अगले 1-1.5 साल में ज़रूरत पड़ने वाली है तो बिल्कुल आप निकल जाइए, क्योंकि ये टाइम होराइजन इक्विटी डोमिनेंट इन्वेस्टमेंट्स के लिए रिस्की हो सकता है, इतनी छोटी अवधि के लिए नहीं बने। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, आपने मार्केट में इन्वेस्ट किया था रिटर्न बनाने के लिए, वेल्थ क्रिएट करने के लिए, तो इतनी जल्दी आप निराश होकर मार्केट से जाएं, मैं ऐसा सुझाव नहीं दूंगा। पिछला 1-2 साल मार्केट्स के लिए जनरली डिसअपॉइंटिंग रहा है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ किस पिछले 5-7 साल में जिस टाइप के मार्केट ने रिटर्न दिए थे, और जिन रिटर्न एक्सपेक्टेशन के साथ पिछले 1-2 साल में जो नए निवेशक बाजार से जुड़े, तो पुराने रिटर्न के मुकाबले उनके लिए थोड़ा डिसअपॉइंटिंग फेस रहा है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि डिसअपॉइंटमेंट की ऐसी कोई खास वजह है। आप इन इन्वेस्टमेंट्स को समय दीजिए, इक्विटी इन्वेस्टमेंट के लिए पेशेंस सबसे ज़रूरी है, तो मेरी राय में आप बने रहिए।
0: जी, अगले कॉलर हैं चेन्नई से सेतुपति, स्वागत है आपका, सवाल पूछें।
4: या गुड इवनिंग सर,
0: गुड
4: कंप्लीट
0: इवनिंग।
4: टीम। दिस इज रिगार्डिंग द सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। आई एम नॉट आस्किंग पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज, हाउ मच परसेंटेज आई कैन इन्वेस्ट इन दिस इन्वेस्टमेंट इन सेमीकंडक्टर प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रीज, इफ पॉसिबल नेम द इंडस्ट्रीज। थैंक यू।
1: आई एम अफ्रेड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से पुट अ स्पेसिफिक परसेंटेज एज अ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर, यू नो, सिंस दिस शो इज स्पेसिफिक टू म्यूचुअल फंड्स। आई वुड से दैट दैट इज अ होल आइडिया ऑफ इन्वेस्टिंग इन अ म्यूचुअल फंड, दैट दीज काइंड ऑफ क्वेरीज और दीज काइंड ऑफ डाउट्स यू कैन वेरी कन्वीनियंटली लीव टू द एक्सपर्टीज ऑफ अ फंड मैनेजर। एट ऑन योर एंड यू शुड ओनली चूज a handful of good diversified long term wealth creating equity funds which have had a good and consistent track record of delivering a strong performance. These could be from the categories of flexi cap, multi cap, value, and let the fund manager decide what kind of allocations should go to which sectors and when.
0: वैसे क्या भारत में सेमी कंडक्टर्स के लिए कोई अलग फंड है इस इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ? नहीं
1: जी, नहीं। अभी इस टाइप की इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज वैसे भी भारतीय बाजार में बहुत ज्यादा आपको मिलती नहीं है लिस्टेड यूनिवर्स में, तो इस थीम के स्पेसिफिक आपको कोई फंड अभी नहीं मिलेगा
0: जी। एक और सवाल था आशुतोष, अभी जो कई बार हम लोग चर्चा भी करते रहते हैं और कई बार हमारे कई श्रोता और जो छोटे निवेशक हैं, जैसे अभी भी एक सवाल था कुछ, कई बार ऐसा होता है कि हमने निवेश किया था किसी फंड में और थोड़े समय के बाद देखते हैं कि उसका नाम बदल गया है या कैटेगरी बदल गई है। जैसे कोई इक्विटी एंड डेट फंड था पहले अभी, और थोड़े समय के बाद देखते हैं कि वो एग्रेसिव हाइब्रिड हो गया है। तो क्या हमने जिस समझ के साथ उसमें निवेश करना शुरू किया था, क्या हमें उस पर विचार करना चाहिए फिर से, क्योंकि क्या वो एग्रेसिव हाइब्रिड मेरा रिस्क बढ़ा देता है?
1: तो देखिए, नाम अगर चेंज हो रहा है फंड का लेकिन काम नहीं बदल रहा है, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि कुछ वर्षों पहले सेबी ने स्टैंडर्डाइज करी थी कैटेगरीज, और फंड्स को ये निर्देश भी दिए गए थे कि सबके नाम उस कैटेगरी से अलाइंड होने चाहिए, जिससे निवेशकों को ये क्लियर पता चले कि वो किस टाइप के फंड में निवेश कर रहे हैं, उसका क्या रिस्क रिटर्न पे ऑफ होगा, तो उस

0: एक्सरसाइज के रिजल्ट में काफी फंड्स ने अपने थोड़े नाम चेंज किए थे. तो अगर फंड का सिर्फ नाम बदल रहा है तो मेरा ख्याल उससे आपको कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है. आपने एक इन्वेस्टमेंट नीड के लिए सोच समझकर एक फंड में इन्वेस्ट किया था और अगर वो वही काम करता चला जा रहा है तो उसमें कोई चिंता की बात नहीं है. लेकिन हाँ, अगर कैटेगरी चेंज का मतलब है कि उसका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव भी चेंज हो रहा है, एक जैसे इक्विटी एंड डेट फंड जो एग्रेसिव हाइब्रिड में उसका नाम तब्दील हुआ, तो वो फंड काम अभी वही कर रहा है. 75% के करीब पैसा आपका इक्विटी में लगाता है, बाकी पैसा आपका डेट में लगाता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. आपको वही कॉन्टिन्यूटी, वही इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी, वही पे ऑफ्स मिल रहे हैं. लेकिन अगर नाम चेंज के साथ साथ फंड का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव भी चेंज हो रहा है तो आपको ध्यान देना होगा और आपको देखना होगा कि क्या नई कैटेगरी में वो आपकी वही इन्वेस्टमेंट नीड्स को फुलफिल करने में फंड अभी भी सक्षम है या नहीं है. और आमतौर पर ये होता है कि जब भी फंड अपना इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव चेंज करता है, अपनी कैटेगरी चेंज करता है, तो फंड इन्वेस्टर्स को ये ऑप्शन देता है कि बिना एग्जिट लोड चार्ज किए उनको उस फंड से एग्जिट की ऑप्शन हमेशा प्रोवाइडेड रहती है. शुरू के कुछ हफ्तों में कुछ 30 डेज का या कुछ इस टाइप का विंडो दिया जाता है इन्वेस्टर्स को. तो अगर वो फंड आपके लिए अब सूटेबल नहीं है नई इन्वेस्टमेंट कैटेगरी में, तो आप उससे एग्जिट करने का निर्णय लेकर ज्यादा सूटेबल फंड में मूव कर सकते हैं. लेकिन सिर्फ नाम चेंज की वजह से मेरा ख्याल आपको ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है.
1: Ashutosh, I've been listening to you very carefully and in these last 20 minutes you've given us good piece of advice. So taking cue from just what you've been saying, no doubt returns of a mutual fund are a guiding criteria. But when it comes to choosing a mutual fund, how important is it to analyze your time horizons, financial goals, your own personal risk appetite? What's your expert comment on this?
0: It is the foremost, because fund selection comes later. The first thing is which type of fund is suitable. Often the start of any conversation is tell me the best fund, but the idea is first you should focus on getting the right type of investment fund for you, and then the right fund, the question of the best fund comes later, because every fund there are it's a very wide spectrum of funds which is available.
1: Correct.
0: Which diverge significantly in their risk return payoffs or the risk return promise that they provide to the investors. So it's very important that the fund you choose aligns well with your risk appetite, your investment horizon, the investment need that for which you are wanting to invest. And once you've zeroed down on the right category of funds, only then you go down to picking one or two suitable funds from those categories and going ahead with your investment.
2: जी, और देखते हैं कि सोने और चांदी का क्या हाल रहा है. सर्राफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में 3 सप्ताह से जारी तेजी का सिलसिला थम गया. जैक्सन होल संगोष्ठी में अमेरिकी फेडरल रिजर्व के चेयरमैन केविन वार्श के आक्रामक रुख वाले पहले भाषण के बाद कीमतों पर दबाव बढ़ा. उम्मीद से अधिक अमेरिकी महंगाई के आंकड़ों और मजबूत अमेरिकी डॉलर ने भी निवेशकों के रुख को प्रभावित किया. एमसीएक्स पर अक्टूबर अनुबंध वाला सोना सप्ताह के दौरान 3.8% गिरकर 156,281 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ. वहीं सितंबर अनुबंध वाली चांदी 4% फिसलकर 236,704 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई. कमोडिटी एक्सचेंज पर अक्टूबर अनुबंध वाला सोना सप्ताह के दौरान 3.2% से अधिक गिरकर $4,494.70 प्रति ट्रॉय अंस पर बंद हुआ. और सितंबर अनुबंध वाली चांदी सप्ताह के दौरान 3.6% से अधिक गिरकर $66.99 प्रति ट्रॉय अंस पर बंद हुई.
1: और आइए पूछे कृपा शंकर जी से उनका सवाल.
3: हेलो, नमस्कार जी.
1: जी नमस्कार.
3: हेलो.
1: हाँ जी, सवाल पूछे.
3: हाँ, मैं सर से ये पूछना चाहता हूँ कि एक तो बच्चा है 12 साल का, उसके लिए अगर म्यूचुअल फंड हम आगे के लिए रिमेन करना चाहें तो किस ढंग से इसका प्रोसीजर है और हर महीने कितने कितने पैसे देने पड़ेंगे, मिनिमम से मिनिमम और मैक्सिमम से तो जितना भी डाल सकते हैं तो होता ही है. तो इसका प्रोसीजर बताइए कि बच्चा 7th क्लास में है, 12 साल का है बच्चा है, तो उसके लिए कुछ करना चाहते हैं आगे के लिए, कब तक वो हम उसको हर महीने कितना कितना, क्योंकि इसकी न्यू कस्टमर की जानकारी नहीं है हमारे.
0: जी, तो मिनिमम निवेश आजकल म्यूचुअल फंड्स में काफी कम, कुछ फंड्स में तो आप 100 रुपये प्रति माह भी मिनिमम इन्वेस्ट कर आप एसआईपी कंटिन्यू रख सकते हैं. काफी सारे फंड 100 रुपये या

0: ₹500 से शुरुआत आपको प्रोवाइड करते हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की, तो आप अपने अमाउंट को इन इनिशियल इन्वेस्टमेंट अमाउंट्स, मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट से अलाइन कर चूज कर सकते हैं। जहां तक बात रही कि निवेश किस तरह करें, तो देखिए आप बच्चे के नाम में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसके लिए एक गार्डियन चाहिए होता है, जो गार्डियन का पैन का इंफॉर्मेशन लगता है, और आप गार्डियन अंडर गार्डियनशिप बच्चे के नाम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन 18 साल का जब बच्चा हो जाता है उसके बाद उन पर फ्रीज लग जाएगा, जब तक आप वो यूनिट्स बच्चे के नाम में ट्रांसफर नहीं करेंगे। थोड़ा ये मेरे हिसाब से कॉम्प्लिकेटेड रहता है, तो मेरी सलाह मानिए तो आप एज गार्डियंस पेरेंट्स आप अपने ही अकाउंट से बच्चे के लिए निवेश करें, और बच्चे को चाहे आप नॉमिनी बना दीजिए उस इन्वेस्टमेंट में, और इन्वेस्टमेंट्स पे आपका ज़्यादा कंट्रोल रहेगा। कोई 18 साल की उम्र के बाद कंपल्सरीली उनको ट्रांसफ़र करने की आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं रहेगी, तो आप अपने नाम से ही मेरे हिसाब से निवेश अभी शुरू कर सकते हैं और उसको इन्वेस्टेड रखें, और बाद में आप कॉल ले सकते हैं कि आपको किस तरह ये यूनिट्स को ट्रांसफ़र करना है या उनको उसी तरह कंटिन्यू रखना है।
1: जी, बच्चों की बात आई तो कई बार देखते हैं हम कि जो अपने 18 साल की लिमिट है, तो 20-21 साल के जो युवा हैं हमारे और अभी पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन कई बार होता है कि कुछ पॉकेट मनी से या कुछ पार्ट टाइम काम करके कहीं कुछ कमाया, और SIP का शौक आजकल इतना है या इन्वेस्टमेंट का शौक इतना है या अवेयरनेस इतनी बढ़ गई है कि वो भी चाहते हैं कि हम इसमें निवेश करें। क्या इसके लिए निवेश करने पर कुछ उन्हें फिर टैक्स फाइल करना जरूरी हो जाता है या कुछ इस तरह की कोई बाधा तो नहीं आती उनके?
0: जी, अगर कभी रिडम्पशन हो रही है और कोई कैपिटल गेन एक्रू हो रहा है तो आपको रिटर्न फाइल करनी होगी। लेकिन अगर आप वैसे निवेशित हैं, आपको अदरवाइज अगर आपको इनकम आपकी इतनी नहीं है या आप रिटर्न फाइल करने से अदरवाइज एग्जेम्प्ट हैं, तो ऐसी कोई बाधा आपके लिए
1: कोई बाध्यता नहीं है।
2: जी, आशुतोष जी, सिंस वी आर ऑन द जेन जी, सो इन दिस फास्ट पेस्ड टेक्नोलॉजी ड्रिवन वर्ल्ड, हाउ हैव डिजिटल प्लेटफॉर्म्स चेंज्ड द पिक्चर ऑफ इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड्स एज फार एज द यंग जनरेशन इज कंसर्न्ड?
0: सो आई'ड से नॉट जस्ट फॉर द यंग जनरेशन बट अक्रॉस द बोर्ड, द डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैव ग्रेटली डेमोक्रेटाइज्ड एक्सेस टू म्यूचुअल फंड्स, बिकॉज देयर वाज अ टाइम व्हेन टू मेक एन SIP यू हैड टू गिव पोस्ट डेटेड चेक्स। When I started investing about 20-25 years back, at that time you did not have a facility to create an e-mandate, an e-NASH mandate through which your SIPs would be deducted every month. My first SIP was through post-dated checks. So I set up an SIP for 12 months and I had to give 12 checks. But things have moved, at a rapid pace from there on. It is not just, it is the evolution of the entire ecosystem. It is not just about the platforms that have come up, but your KYC formalities now can be done completely through DigiLocker, through Aadhaar. All these facilities are completely digitized, and in about 15 minutes time, you can set up your account, from scratch and make your first investment. So, of course, it connects much more with the younger generation because they've started, with everything digital. But even for elder investors or senior citizens.
2: All right. The Reserve Bank of India's special swap facility for foreign currency non-resident bank FCNRB deposits will be available for deposits mobilized until 31st August. The Reserve Bank introduced the special USD-INR forex swap facility covering FCNRB deposits, external commercial borrowings and overseas foreign currency borrowings on 8th of June with a view to strengthen India's balance of payments and incentivize capital inflows. Meanwhile, we have another caller from Delhi. Vinodji, sawal puche.
3: Puri Martin Mantra team ko mitra se namaskar.
2: Ji, namaskar.
3: Main Ashutosh sir se puchna chahunga ki jab main jaise ki pichle saal se main return kuch nahi aaya mutual fund se, lekin hum in real estate ki inflation ko kaise beat kare, hamare paas kya kya raaste hain ki is inflation ko beat karne ke? Thank you.
0: तो देखिए, मेरी राय में जो सबसे पोटेंट तरीका मुझे लगता है कि म्यूचुअल फंड्स या इक्विटी इन्वेस्टमेंट, इक्विटी एज एन एसेट क्लास के पास शायद सबसे ज़्यादा सक्षमता है लॉन्ग टर्म में इन्फ्लेशन को बीट करने की और एक जेन्युइन वेल्थ जनरेट करने की। आजकल आपने रियल एस्टेट बोला, रियल एस्टेट का देखिए टिकट साइज बहुत ज़्यादा है और उसके जो मेंटेनेंस चार्जेस हैं, बहुत सारे इनविजिबल एक्सपेंसेस भी रियल एस्टेट में होते हैं। क्या सच में आप एक अच्छा रिटर्न बना पाते हैं कि नहीं?

0: मेरा ख्याल है केस बाय केस डिपेंड करेगा, बट आजकल रियल एस्टेट का एक्सपोजर लेने के लिए रीट्स के तौर पर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट से एक अच्छा साधन उभर के आ रहे हैं. अभी बहुत सारे रीट्स मार्केट में नहीं है, लेकिन सेबी काफ़ी जागरूकता इसके लिए ला रही है, प्रयास किए जा रहे हैं कि रीट्स को भी एक मेन स्ट्रीम इन्वेस्टमेंट बनाया जाए रियल एस्टेट में, इन एक रेगुलेटेड और ट्रांसपेरेंसी के साथ इन्वेस्ट करने का एक आम निवेशक के लिए जरिया मेरा ख्याल बनने का काफ़ी काफ़ी संभावना है, काफ़ी पोटेंशियल है रीट्स में. तो एक रीट्स एक आप दूसरी एसेट क्लास है जिसको आप इस लिहाज से देख सकते हैं.
1: Well, now let's take a peep into how the markets are expected to show up next week. Domestic investors are set to navigate a week packed with key market triggers, including macroeconomic data, foreign institutional investor flows, commodity prices, and currency movements. Market participants will closely monitor the first quarter gross domestic product GDP estimate for the current fiscal year, scheduled to release tomorrow. The index of services production data will also remain in focus. Investors will also monitor manufacturing and services purchasing managers index, PMI readings, GST collections and forex reserves.
2: जी, आज वक्त इतना ही है आशुतोष, कार्यक्रम में आने और श्रोताओं के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद.
0: जी धन्यवाद.
1: Listeners, a reminder of the headlines. India and Uzbekistan elevate ties to comprehensive strategic partnership, set bilateral trade target of $5 billion by 2030. Foreign portfolio investors infuse over 30,000 crore rupees into Indian equities in August so far. And in bullion market, gold and silver prices snap 3-week rising streak. And that's all in today's edition of Market Mantra. See you tomorrow. Until then, goodbye.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं. आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें.
4: You were listening to a repeat broadcast of today's Market Mantra program, originally aired at 6:30 p.m.

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर वक्त हो चुका है ठीक 11:41 और 5 सेकंड, और यह वक्त है आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम गीत मेरे मनमीत का। और गीत मेरे मनमीत की इस बेहद खूबसूरत महफिल में मैं आपके लिए उन चुनिंदा नगमों को लेकर आता हूँ जो सुनहरे दौर के हैं, यानी गोल्डन एरा के वो नगमे हैं जो बेहद खूबसूरत और बहुत ही प्यारे, जिसे आप बार बार सुनना भी चाहते हैं, गुनगुनाना भी चाहते हैं। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त फेरोज। तो आप तमाम सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, पुरखलूस आदाब। तो आइए आज के इस बेहद खूबसूरत सफर का आगाज करते हैं बहुत ही प्यारे नगमे के साथ। आवाज है मुकेश साहब की और इस गीत को लिखा है शैलेंद्र ने और संगीत है सलील चौधरी साहब का। यह फिल्म आई थी 1956 में और यह फिल्म है जागते रहो। तो आइए इसे फिल्म का एक बेहद खूबसूरत नगमा मुकेश साहब की आवाज में आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: सच है क्या सब सच।
1: जी हाँ, जिंदगी ख्वाब है, ये सिर्फ एक गीत नहीं बल्कि जिंदगी को देखने का एक गहरा फलसफा है। साल 1956 की यह फिल्म जागते रहो सिता बेहद खूबसूरत, बहुत ही प्यारा यह नगमा मुकेश साहब की आवाज में। यह गीत हमें याद दिलाता है कि इंसान जिंदगी को पूरी तरह सच समझकर जीता है। वो कभी कभी ये ख्वाब जैसी भी लग सकती है, खुशियां हो या गम हो, रिश्ते हो या तन्हाई, वक्त के साथ सब कुछ बदलता रहता है और यही जिंदगी की हकीकत है। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर महफिल सजी है आपकी अपनी पसंदीदा गीत मेरे मनमीत की, जिसमें हम सुनहरे दौर के उन नगमों के साथ हाजिर हैं जो हम सबको बहुत ही प्यारे हैं। और अगला नगमा एक बेहद खूबसूरत, बहुत ही प्यारा फिल्म दिल देखो देखो से नासिर हुसैन साहब के निर्देशन में यह बनी फिल्म आई थी 1959 में। एक ऐसा गीत जिसमें शरारत और मस्ती का बेहद खूबसूरत तालमेल है। फिल्म दिल देखे देखो का यह बेहद चुलबुला और दिलकश गीत अपनी मधुर आवाजों के लिए याद किया जाता है। इसे अपनी आवाजें दी मोहम्मद रफी साहब और आशा जी ने। इस गीत में प्रेम की वो मासूमियत है और वो शरारत है जो पुराने जमाने के रोमांटिक गीतों की खास पहचान हुआ करती थी। रफी साहब की दिलकश आवाज और आशा जी की चंचल अदायगी मिलकर गीत में एक खूबसूरत नोक झोंक पैदा करती है। ये गीत सिर्फ प्यार की बात नहीं करता बल्कि प्यार में छुपी दोस्ती, शरारत और मुस्कुराहट को भी सामने लाता है। तो आइए सुनते हैं ये बेहद खूबसूरत नगमा फिल्म दिल देखे देखो से।

आरजू फिल्म की इसी कव्वाली के साथ मुझे यानी फेरोज को अब दीजिए इजाजत। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार, और समाचारों के बाद अगला कार्यक्रम लेकर आपके साथ रहेंगी श्रेयाशी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी हमारी मुलाकात। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। भारत और उज्बेकिस्तान ने आपसी संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का फैसला किया है। उज्बेकिस्तान भारत को यूरेनियम की दीर्घकालिक आपूर्ति के लिए रूपरेखा तय करने और दुर्लभ खनिजों के खनन स्थलों पर चर्चा करने के लिए भी सहमत हुआ है। दोनों देशों ने खनन, आयुर्वेद, पर्यटन, आर्थिक और वित्तीय संवाद, व्यापक और रणनीतिक साझेदारी, उच्च शिक्षा और पर्यावरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के बीच द्विपक्षीय वार्ता के दौरान उज्बेकिस्तान में पढ़ाई के लिए जाने वाले भारतीय युवाओं के हित में और सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रमों के लिए कई उपायों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद और अलगाववाद कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर अमल करते हैं।
1: दोनों देशों के बीच करीबी रक्षा और सुरक्षा सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास को दर्शाता है। आने वाले समय में हम दोनों देशों की डिफेंस इंडस्ट्रीज के बीच डायरेक्ट लिंकेज, को प्रोडक्शन और को डेवलपमेंट को बढ़ावा देंगे। हमारा मानना है कि टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म और सेपरेटिज्म पूरे क्षेत्र के लिए गंभीर चुनौती है। इनके विरुद्ध जीरो टॉलरेंस हमारा साझा संकल्प रहा है और आगे भी रहेगा।
0: प्रधानमंत्री मोदी को उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान ओली दराजली दुस्तलिक ऑर्डर भी प्रदान किया गया। ये विदेशी नेताओं को प्रदान किए जाने वाला उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान है। इसके बाद श्री मोदी ने ताशकंद में पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने ताशकंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ ओरिएंटल स्टडीज में महात्मा गांधी सेंटर का दौरा किया। श्री मोदी ने भारतीय विशेषज्ञों और छात्रों से बातचीत भी की। उज्बेकिस्तान की सफल यात्रा के बाद श्री मोदी किर्गिस्तान की दो दिन की यात्रा के लिए बिश्केक पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में शामिल होने के

0: अलावा कई सदस्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा अभियान पूरे देश में तेजी से आगे बढ़ रहा है और बड़ी संख्या में युवा इस अभियान में शामिल हो रहे हैं।
1: नशा मुक्त भारत के लिए क्या आप कोई पावरफुल स्लोगन बना सकते हैं कि हमारे यंग म्यूजिशियंस ऐसे सॉन्ग्स बना सकते हैं जिनमें ड्रग फ्री लाइफ का मैसेज हो? क्या स्टूडेंट्स और थिएटर ग्रुप दिल को छू लेने वाले शॉर्ट प्लेज लिख सकते हैं जिनमें ड्रग्स के खतरों के साथ साथ उनसे बाहर निकलने का रास्ता भी हो? हमारे देश में बेहतरीन कंटेंट क्रिएटर्स की कमी नहीं है। मेरा आग्रह है कि वे अलग अलग भाषाओं में ऐसा कंटेंट बनाएं जिससे इस दिशा में समाज को मदद मिले।
0: नेपाल में अचानक आई बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 781 हो गई है। आपदा के पांचवें दिन भी 2,500 से अधिक लोग लापता हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि बाढ़ के बाद नेपाल में अब तक 149 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। पहले लापता करीब 50 भारतीय नागरिकों से फिर संपर्क हो गया है। 275 भारतीय नागरिक अब भी लापता हैं, वहीं 128 भारतीय मूल के लोग भी लापता हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी NIFT के संयुक्त दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। देशभर के 18 NIFT कैंपस से स्नातक होने वाले विद्यार्थी अपनी डिग्री मिलने और संस्थान में अपनी अकादमिक यात्रा के समापन का उत्सव मनाने के लिए एक साथ आएंगे। दुबई में एशिया कप महिला T20 क्रिकेट में भारत ने थाईलैंड को 94 रन से हराकर अपने अभियान की शानदार शुरुआत की। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट पर 159 रन बनाए। थाईलैंड की ओर से नानापत कोचारोइनकाई ने सबसे ज्यादा 41 रन बनाए। भारत की शेफाली वर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Reshma Tiwari. India and Uzbekistan have decided to elevate their bilateral relationship to a comprehensive strategic partnership. The two countries have also agreed to establish a long-term arrangement for the supply of uranium from Uzbekistan to India. Both sides have set a target of increasing annual bilateral trade to $5 billion by 2030. The decisions were taken following delegation-level talks between Prime Minister Narendra Modi and Uzbekistan President Shavkat Mirziyoyev in Tashkent. The two leaders witnessed the exchange of 11 Memoranda of Understanding, MOUs, aimed at expanding bilateral cooperation across key sectors, including mining, culture, education, tourism, economic and financial dialogue, and Ayurveda. In his remarks during the talks, Prime Minister Modi said a stronger India-Uzbekistan partnership would be a powerful force for peace, progress and prosperity in Central Asia.
3: इस वर्ष हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के 15 साल हो रहे हैं। इस विशेष अवसर पर हमने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। हमारा द्विपक्षीय व्यापार $1 बिलियन पार कर चुका है। अब हमने 2030 तक $5 बिलियन व्यापार का लक्ष्य रखा है। इसके लिए हम मार्केट एक्सेस, कनेक्टिविटी, बैंकिंग और पेमेंट जैसे जुड़े विषयों पर व्यवस्थागत रूप से आगे बढ़ेंगे।
2: Later, at a joint press conference with the President of Uzbekistan, Prime Minister Modi was conferred Uzbekistan's highest state honor, the Order of Oliye Darjali Dostalik, by President Shavkat Mirziyoyev. Prime Minister Modi dedicated the accolade to the 1.4 billion people of India and highlighted that it symbolizes the enduring friendship between the two civilizations. Mr. Modi reached in Tashkent on Saturday on a two-day visit to Uzbekistan. After concluding his visit, Prime Minister Modi arrived in the Kyrgyz Republic to participate in the 26th Shanghai Cooperation Organization, SCO.

आकाशवाणी के 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का एफएम गोल्ड चैनल। घड़ी में ठीक 12:11 शुरू हो चुका है और अब आइए इस कार्यक्रम को भी शुरू करने का प्रारंभ करते हैं। मैं हूं आपके साथ श्रेयाशी और ये है हमारा प्यारा कार्यक्रम निशिकंधा। तो आइए शुरुआत करते हैं इस नगमे से।

0: तो दोस्तों अभी जो नगमा आपने सुना फिल्म जॉनी मेरा नाम से लिया हमने, आवाजें आशा भोसले और किशोर कुमार की, बोल सजाए रजिंदर कृष्ण ने और म्यूजिक कल्याण जी आनंद जी का। और दोस्तों जब बात होती है बॉलीवुड के गानों की तो ज्यादातर गाने तो इतने मस्त होते हैं कि बस कहीं ना कहीं हमारे किसी पुराने ख्याल से, पुराने किसी बात से उसे जोड़े जाते हैं। और ऐसा ही एक ख्याल जस्ट अभी मेरे दिमाग में भी आ गया, बताओ क्या? यही कि जब भी प्यार में इकरार होता है, तकरार होता है, तो चाहे अनचाहे हम हमेशा एक दूसरे से सहमत हो ही जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अब हम अपने इस अगले गीत की तरफ, फिल्म सीता और गीता का ये अगला नंबर, आवाज आशा भोसले और किशोर कुमार की, बोल सजाए हैं आनंद बख्शी ने और म्यूजिक आर डी बर्मन साहब का।
1: उठे सबके कदम देखो रम पम पम।
0: तो लीजिए ये अगला गीत फिल्म बातों बातों में से है, तो आइए एंजॉय करते हैं इस नंबर को।

बात भी बहुत सही कही है कि क्या होगा किसे क्या खबर। और ऐसे ही कुछ शब्द आज मेरे सामने से होकर गुजरे जो मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगी। जिंदगी अपने किसी भी पन्ने को दोबारा नहीं दोहराएगी। जिंदगी अपने किसी भी पन्ने को दोबारा नहीं दोहराएगी। जो लम्हा आज मिला है उसे जी भर कर जी लो। जितनी यादें जितने हंसते हुए पल समेट सकते हो समेट लो, क्योंकि आखिर में हमारे पास सिर्फ कहानियां रह जाएंगी। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने इस अगले गीत की तरफ।

गैम्बलर फिल्म का ये नगमा दोस्तों आपने सुना किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में। बढ़ते हैं अब अपने अगले गीत की तरफ। फिल्म कल आज और कल से लिया है ये गीत हमने, आइए सुनते हैं ये गीत।

0: लाभ होगा ना।
1: मगर क्यों?
0: शादी तो बर्बादी है।
1: क्या कहती हो?
0: हो जाती आजादी है।
1: नहीं नहीं सुनो तो, नाना सुनो तो, सुनो तो।
2: आप यहाँ आए इसलिए, आपने बुलाया इसलिए, आए हैं तो काम भी बताइए, पहले जरा आप मुस्कुराइए, पहले जरा आप मुस्कुराइए।

तो दोस्तों, जब इस तरह के कोई खास नगमे हमारे सामने आते हैं, हम जब उन्हें सुनकर यूं ही झूम उठते हैं, तो अक्सर मन में ना बड़ी अजीबो गरीब सी ख्याल, अजीबो गरीब सी बातें हमारे मन में उठ जाती हैं। तो कुछ ऐसे ही मेरे दिल में भी एक ख्याल आ गया। भाई, अब वो ख्याल क्या था? तो ख्याल कुछ ऐसा था कि दिल तोड़ने वालों को सजा क्यों नहीं मिलती है, दिल तोड़ने वालों को सजा क्यों नहीं मिलती है, मोहब्बत में हर किसी को सफलता क्यों नहीं मिलती है। और लोग कहते हैं कि इश्क एक बीमारी है, लोग कहते हैं कि इश्क एक बीमारी है, तो मेडिकल स्टोर पर इसकी दवा क्यों नहीं मिलती है?

0: फिल्म पड़ोसन का ये नगमा दोस्तों आपने सुना, और जब बात होती है फिल्म पड़ोसन की, वो भी अपने बॉलीवुड के पुराने वाली, तो किशोर कुमार तो यू सबसे पहले अपनी आंखों के सामने आते हैं। जी हाँ, या ये गीत भी किशोर कुमार की आवाज में था और म्यूजिक दिया आर डी बर्मन साहब ने। ऐसे तो अभी गीतों का सिलसिला श्रेयसी के साथ शुरू ही हुआ है, क्योंकि अभी आगे भी कार्यक्रम हमारे साथ चलते ही रहेंगे, लेकिन फिलहाल हमारे निशिगंधा को जल्दी विराम देने का समय हो जाएगा। तो विराम दें, उससे पहले चलते चलते एक आखिरी गीत आपके लिए, फिल्म का नाम इवनिंग इन पेरिस, आवाज रफी साहब की।
1: अरे

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। भारत और उज्बेकिस्तान ने आपसी संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का फैसला किया है। उज्बेकिस्तान भारत को यूरेनियम की दीर्घकालिक आपूर्ति के लिए रूपरेखा तय करने और दुर्लभ खनिजों के खनन स्थलों पर चर्चा करने के लिए भी सहमत हुआ है। दोनों देशों ने खनन, आयुर्वेद, पर्यटन, आर्थिक और वित्तीय संवाद, व्यापक और रणनीतिक साझेदारी, उच्च शिक्षा और पर्यावरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के बीच द्विपक्षीय वार्ता के दौरान उज्बेकिस्तान में पढ़ाई के लिए जाने वाले भारतीय युवाओं के हित में और सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रमों के लिए कई उपायों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद और अलगाववाद कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर अमल करते हैं।
1: दोनों देशों के बीच करीबी रक्षा और सुरक्षा सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास को दर्शाता है। आने वाले समय में हम दोनों देशों की डिफेंस इंडस्ट्रीज के बीच डायरेक्ट लिंकेज, को प्रोडक्शन और को डेवलपमेंट को बढ़ावा देंगे। हमारा मानना है कि टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म और सेपरेटिज्म पूरे क्षेत्र के लिए गंभीर चुनौती है। इनके विरुद्ध जीरो टॉलरेंस हमारा साझा संकल्प रहा है और आगे भी रहेगा।
0: प्रधानमंत्री मोदी को उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान ओली दराजली दुस्तलिक ऑर्डर भी प्रदान किया गया। ये विदेशी नेताओं को प्रदान किया जाने वाला उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान है। इसके बाद श्री मोदी ने ताशकंद में पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने ताशकंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ ओरिएंटल स्टडीज में महात्मा गांधी सेंटर का दौरा किया। श्री मोदी ने भारतीय विशेषज्ञों और छात्रों से बातचीत भी की। उज्बेकिस्तान की सफल यात्रा के बाद श्री मोदी किर्गिस्तान की दो दिन की यात्रा के लिए बिश्केक पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में शामिल होने के अलावा कई सदस्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 781 हो गई है। आपदा के पांचवें दिन भी 2,500 से अधिक लोग लापता हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि बाढ़ के बाद नेपाल में अब तक 149 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। पहले लापता करीब 50 भारतीय नागरिकों से फिर संपर्क हो गया है।

0: 275 भारतीय नागरिक अब भी लापता हैं, वहीं 128 भारतीय मूल के लोग भी लापता हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने नेपाल में आई भीषण बाढ़ से प्रभावित लोगों को तत्काल स्वास्थ्य सेवाएं और जरूरी राहत पहुंचाने के लिए दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय स्वास्थ्य आपात कोष से 1,50,000 अमरीकी डॉलर की वित्तीय सहायता प्रदान की है। वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारामन ने देश की सॉफ्ट पावर, वैश्विक समझ और द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने वाली दुर्जय शक्ति के रूप में प्रवासी भारतीय समुदाय की भूमिका की सराहना की है। उन्होंने अमरीका के शिकागो में वाइब्रेंट भारतीय समुदाय कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर वित्त मंत्री ने प्रमुख बाजार के रूप में भारत की क्षमता पर बल देते हुए कहा कि देश स्वायत्त रक्षा प्रणालियों के विकास, परीक्षण और विनिर्माण का वैश्विक केंद्र है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी NIFT के संयुक्त दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। दुबई में एशिया कप महिला T20 क्रिकेट में भारत ने थाईलैंड को 94 रन से हराकर अपने अभियान की शानदार शुरुआत की है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट पर 159 रन बनाए। शेफाली वर्मा ने 64 रन की शानदार पारी खेली। जवाब में थाईलैंड की पूरी टीम 15 ओवर और 3 गेंद में 65 रन पर सिमट गई। भारत की शेफाली वर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Tanvi Gupta. India and Uzbekistan have decided to elevate their bilateral relationship to a comprehensive strategic partnership. The two countries have also agreed to establish a long-term arrangement for the supply of uranium from Uzbekistan to India. Both sides have set a target of increasing annual bilateral trade to $5 billion by 2030. The decisions were taken following delegation-level talks between Prime Minister Narendra Modi and Uzbekistan President Shavkat Mirziyoyev in Tashkent. The two leaders witnessed the exchange of 11 memorandum of understandings aimed at expanding bilateral cooperation across key sectors, including mining, culture, education, tourism, economic and financial dialogue, and Ayurveda. In his remarks during the talks, Prime Minister Modi said a stronger India-Uzbekistan partnership would be a powerful force for peace, progress and prosperity in Central Asia.
2: इस वर्ष हमारी strategic partnership के 15 साल हो रहे हैं। इस विशेष अवसर पर हमने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। हमारा द्विपक्षीय व्यापार $1 बिलियन पार कर चुका है। अब हमने 2030 तक $5 बिलियन व्यापार का लक्ष्य रखा है। इसके लिए हम मार्केट एक्सेस, कनेक्टिविटी, बैंकिंग और पेमेंट जैसे जुड़े विषयों पर व्यवस्थागत रूप से आगे बढ़ेंगे।
1: Later, at a joint press conference with the President of Uzbekistan, Prime Minister Modi was conferred Uzbekistan's highest state honor, the Order of Oliy Darajali Dostalik, by President Shavkat Mirziyoyev. Mr. Modi reached in Tashkent on Saturday on a two-day visit to Uzbekistan. After concluding his visit, Prime Minister Modi arrived in the Kyrgyz Republic to participate in the 26th Shanghai Cooperation Organization Summit in the capital, Bishkek. Finance Minister Nirmala Sitharaman said that India is likely to sustain an economic growth rate of 7% or more in the financial year 2026-27, continuing the momentum recorded in the years since the COVID-19 pandemic. Addressing the Indian diaspora in Chicago during her U.S. visit, she said that India was likely to maintain its growth momentum despite geopolitical uncertainties and supply chain disruptions following the U.S.-Iran conflict and the closure of the Strait of Hormuz. President Draupadi Murmu will grace the National Institute of Fashion Technology, NIFT, Combined Convocation 2026 in New Delhi today. Graduating students from 18 NIFT campuses across the country will come together to celebrate the conferment of their degrees and mark the culmination of their academic journey. Union Minister of Textiles, Giriraj Singh, will also be present on the occasion. Nepal has issued a fresh flood alert for the Bhote Koshi River after a rise in its water flow. The National

आकाशवाणी के सौदशमलव एक मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का एफएम गोल्ड चैनल। संघ हूं मैं शर्षि और घड़ी में ठीक 1:11 शुरू हो चुका है और ये वक्त है कार्यक्रम गीत सुहाने का, जहां कुछ चुनिंदा पुराने बेहतरीन नगमे हम आपसे साझा करते हैं। तो आइए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं और शुरुआत करें इस नगमे से।

फिल्म द ट्रेन से ये नगमा दोस्तों हमने सुना अभी, आवाज लता मंगेशकर की, बोल सजाए आनंद बख्शी साहब ने और म्यूजिक आर डी बर्मन का। आइए अब चलें अपने अगले गीत की तरफ। ये नगमा हमने लिया फिल्म लव इन टोक्यो से, बोल हसरत जयपुरी साहब के हैं और म्यूजिक दिया है शंकर जयकिशन ने।

त्रिशूल का ये नगमा दोस्तों आपने सुना, आवाजें लता मंगेशकर और किशोर कुमार की, बोल सजाए साहिर लुधियानवी ने और म्यूजिक दिया खयाम साहब ने। बढ़ते हैं अब अपने इस अगले गीत की तरफ। फिल्म राजकुमार का ये नगमा है, आवाज लता मंगेशकर की।

आकाशवाणी के 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का एफएम गोल्ड चैनल। संग हूं मैं श्रेयसी और कार्यक्रम चल रहा है गीत सुहाने कुछ बेहद पुराने। आइए अब बढ़ते हैं अपने इस अगले गीत की तरफ और कार्यक्रम में यूं ही नई नई कड़ियां जोड़ते चलते हैं।

तुमसे बात करते करते कभी कभी मुझे कोई जल्दी नहीं रहती, न बात खत्म करने की न कुछ खास कहने की। बस तुम्हारे साथ थोड़ा और रुके रहने का मन करता है। और अजीब है, बातें वही रहती हैं, दिन भी वही रहता है, फिर भी तुम्हारे साथ बिताया हुआ वक्त हमेशा थोड़ा और बेहतर लगता है।

फिल्म रामपुर का लक्ष्मण से ये नगमा हमने लिया दोस्तों, आवाजें किशोर कुमार और लता मंगेशकर की, भूल सजाए मजरूं सुल्तानपुरी ने, और म्यूजिक आर डी बर्मन साहब का। अगला गीत जो आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूं लता मंगेशकर की ही आवाज में है, फिल्म है जब जब फूल खिले, भूल सजाए हैं आनंद बख्शी साहब ने और म्यूजिक है कल्याण जी आनंद जी का।

फिल्म ब्लैकमेल का ये नगमा दोस्तों किशोर कुमार की आवाज में आपने सुना, बोल सजाए राजेंद्र किशन ने और म्यूजिक दिया है कल्याण जी आनंद जी ने। आइए अब बढ़ चले अपने इस अगले गीत की तरफ, फिल्म प्यार ही प्यार का ये अगला नगमा आपके लिए।

और दोस्तों, इस गीत के साथ अब घड़ी इशारा कर रही है कि जल्दी हमें अपने कार्यक्रम गीत सुहाने को देना होगा यहाँ विराम। लेकिन चिंता की तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि आप बने हुए हैं 100.1 MHz आकाशवाणी पर, FM गोल्ड पर, जहाँ पर गीतों का सिलसिला यूं ही जारी रहता है। जल्द अब आप सुनेंगे समाचार। समाचारों के पार मैं श्रेयसी फिर से आपसे जुड़ जाऊंगी कुछ नए और गीतों के साथ। तो चलते चलते ये एक आखिरी नगमा आपके लिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। भारत और उज़्बेकिस्तान ने आपसी संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का फैसला किया है। उज़्बेकिस्तान भारत को यूरेनियम की दीर्घकालिक आपूर्ति के लिए रूपरेखा तय करने और दुर्लभ खनिजों के खनन स्थलों पर चर्चा करने के लिए भी सहमत हुआ है। दोनों देशों ने खनन, आयुर्वेद, पर्यटन, आर्थिक और वित्तीय संवाद, व्यापक और रणनीतिक साझेदारी, उच्च शिक्षा और पर्यावरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के बीच द्विपक्षीय वार्ता के दौरान उज़्बेकिस्तान में पढ़ाई के लिए जाने वाले भारतीय युवाओं के हित में और सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रमों के लिए कई उपायों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद और अलगाववाद कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर अमल करते हैं।
1: दोनों देशों के बीच करीबी रक्षा और सुरक्षा सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास को दर्शाता है। आने वाले समय में हम दोनों देशों की डिफेंस इंडस्ट्रीज के बीच डायरेक्ट लिंकेज, को प्रोडक्शन और को डेवलपमेंट को बढ़ावा देंगे। हमारा मानना है कि टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म और सेपरेटिज्म पूरे क्षेत्र के लिए गंभीर चुनौती है। इनके विरुद्ध जीरो टॉलरेंस हमारा साझा संकल्प रहा है और आगे भी रहेगा।
0: प्रधानमंत्री मोदी को उज़्बेकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान ओली दराजली दोस्तलिक ऑर्डर भी प्रदान किया गया। ये विदेशी नेताओं को प्रदान किया जाने वाला उज़्बेकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान है। इसके बाद श्री मोदी ने ताशकंद में पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने ताशकंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ ओरिएंटल स्टडीज में महात्मा गांधी सेंटर का दौरा किया। श्री मोदी ने भारतीय विशेषज्ञों और छात्रों से बातचीत भी की। उज़्बेकिस्तान की सफल यात्रा के बाद श्री मोदी किर्गिस्तान की दो दिन की यात्रा के लिए बिश्केक पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में शामिल होने के अलावा कई सदस्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 781 हो गई है। आपदा के पांचवें दिन भी 2500 से अधिक लोग लापता हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि बाढ़ के बाद नेपाल में अब तक 149 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। पहले लापता करीब 50 भारतीय नागरिकों से फिर संपर्क हो गया है। 275 भारतीय नागरिक अब भी लापता हैं, वहीं 128 भारतीय मूल के लोग भी लापता हैं। वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारामन ने देश की सॉफ्ट पावर, वैश्विक समझ और द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने वाली दुर्जय शक्ति के रूप में प्रवासी भारतीय समुदाय की भूमिका की सराहना की है। उन्होंने अमरीका के शिकागो में वाइब्रेंट भारतीय समुदाय कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर

0: मंत्री ने प्रमुख बाजार के रूप में भारत की क्षमता पर बल देते हुए कहा कि देश स्वायत्त रक्षा प्रणालियों के विकास, परीक्षण और विनिर्माण का वैश्विक केंद्र है। उन्होंने भारत की प्रौद्योगिकी क्षमताओं, कुशल श्रम शक्ति और बढ़ती नवाचार पारिस्थितिकी पर भी बल दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी NIFT के संयुक्त दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। मणिपुर के मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह ने राज्य में समाज के सभी वर्गों से बंद न करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि अपनी मांगे मनवाने के लिए इस तरह की गतिविधियों से कभी कभी अवांछित हिंसक घटनाएं हो जाती हैं। दुबई में एशिया कप महिला T20 क्रिकेट में भारत ने थाईलैंड को 94 रन से हराकर अपने अभियान की शानदार शुरुआत की है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट पर 159 रन बनाए। शेफाली वर्मा ने 64 रन की शानदार पाली खेली। भारत की शेफाली वर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय तन्वी गुप्ता। India and Uzbekistan have decided to elevate their bilateral relationship to a comprehensive strategic partnership. The two countries have also agreed to establish a long-term arrangement for the supply of uranium from Uzbekistan to India. Both sides have set a target of increasing annual bilateral trade to $5 billion by 2030. The decisions were taken following delegation-level talks between Prime Minister Narendra Modi and Uzbekistan President Shavkat Mirziyoyev in Tashkent. In his remarks during the talks, Prime Minister Modi said a stronger India-Uzbekistan partnership would be a powerful force for peace, progress and prosperity in Central Asia.
2: इस वर्ष हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के 15 साल हो रहे हैं। इस विशेष अवसर पर हमने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। हमारा द्विपक्षीय व्यापार $1 बिलियन पार कर चुका है। अब हमने 2030 तक $5 बिलियन व्यापार का लक्ष्य रखा है। इसके लिए हम मार्केट एक्सेस, कनेक्टिविटी, बैंकिंग और पेमेंट जैसे जुड़े विषयों पर व्यवस्थागत रूप से आगे बढ़ेंगे।
1: The two leaders witnessed the exchange of 11 memorandum of understanding aimed at expanding bilateral cooperation across key sectors including mining, culture, education, tourism, economic and financial dialogue and Ayurveda. Later at a joint press conference with the President of Uzbekistan, Prime Minister Modi was conferred Uzbekistan's highest state honor, the Order of Oliy Darajali Dostlik by President Shavkat Mirziyoyev. After concluding his two-day visit to Uzbekistan, Prime Minister Modi reached Kyrgyz Republic to take part in the 26th Shanghai Cooperation Organization Summit in capital Bishkek. Prime Minister Narendra Modi shared his thoughts with the nation in the Mann Ki Baat program on Akashvani yesterday. In his address, the Prime Minister strongly warned against the social perils of drug abuse. He highlighted that Nasha Mukti Yuva for Viksit Bharat campaign for a drug-free youth and a drug-free India is gaining momentum with people joining in large numbers. Defence Minister Rajnath Singh has said India is moving rapidly towards self-reliance in the defence sector and witnessing a major transformation in its defence industrial ecosystem. Mr. Singh was addressing the PM Setu Industry Conclave at Lucknow in Uttar Pradesh yesterday. President Draupadi Murmu will grace the National Institute of Fashion Technology, NIFT, Combined Convocation 2026 in New Delhi today. Graduating students from 18 NIFT campuses across the country will come together to celebrate the conferment of their degrees and mark the culmination of their academic journey. Union Minister of Textiles Giriraj Singh will also be present on the occasion. The government has debunked a post circulating on social media which claimed that the NEET PG exam question papers were leaked in Jaipur. The fact-check unit of the Press Information Bureau has said that the claim is misleading as there has been no question paper leak in the NEET PG examination. It said technical disruptions were faced at Sitapur test centers in Jaipur, Rajasthan due to internal power supply issues. It said the examination for the affected students will be conducted on 5th of next month. Nepal has issued a fresh flood alert for the Bhote Koshi River.

आकाशवाणी के सौदशम्लो एक मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का एफएम गोल्ड चैनल संघ उमेश जोशी और घड़ी में ठीक 2:11 शुरू हो चुका है, तो आइए शुरू करें अपने कार्यक्रम रात सुरमई को। और शुरू करने के लिए शुरुआत है इस नगमे से।

0: पापा कहते हैं का ये नगमा दोस्तों आपने सुना। आवाजें कुमार सानू और अलका याग्निक की थी, बोल सजाए जावेद अख्तर ने और संगीत है राजेश रोशन का। एक और प्यारा सा नगमा आपके साथ साझा करने जा रही हूँ, फिल्म खामोशी से लिया है ये हमने। आवाज है मजरू अलका याग्निक और हरिहरन की, बोल है मजरू सुल्तानपुरी के और म्यूजिक दिया है जतिन ललित ने। पर उससे पहले ये फिल्म का कास्ट है जो कुछ कहना भी चाह रहा है।
1: मैं एनी, मामा पापा का वो नामुमकिन सपना जो सच हुआ है। मैं उनकी दिल की धड़कन हूँ जिसे वो सुन नहीं सकते। मैं उनकी पहचान हूँ, उनकी आवाज हूँ। हमारी छोटी सी दुनिया है सिर्फ तीनों की, लेकिन मैं आसमान को छूना चाहती हूँ, गाना चाहती हूँ। आवाज और खामोशी टकराते गए, फिर भी सपने जिंदा हैं, है ना ये नामुमकिन सपना। लेकिन वो जिंदगी ही क्या जिसमें कोई नामुमकिन सपना ना हो।

फिल्म कभी हाँ कभी ना का ये नगमा दोस्तों आपने सुना, जो फिल्माया गया था शाहरुख खान और पिक्चर के काफी सारे किरदारों पर। बोल थे मजरू सुल्तानपुरी के, आवाजें थी कुमार सानू

और देवकी की. म्यूजिक था जतिन ललित साहब का. आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और जोड़ते हैं इसमें एक और अगला गीत. फिल्म जब प्यार किसी से होता है का ये नगमा. आवाजें हैं कुमार सानू और लता मंगेशकर की, बोल सजाए आनंद बख्शी ने, और म्यूजिक है जतिन ललित का.

दिल तोड़ने वाले को सजा क्यों नहीं मिलती है? ये तो सोचने वाली बात है ना कि दिल तोड़ने वाले को सजा क्यों नहीं मिलती, क्योंकि कई बार खुद हमें ही पता नहीं चलता कि कब दिल लग गया या क्यों और कैसे दिल टूट गया। पर कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ बातें हमारे अंदर ही रह जाती हैं और उसे हम बयां नहीं कर पाते, और एक अरसे के बाद जाके हमें एहसास होता है कि वो कोई खास एहसास था। अर्ज किया है, हर कोई मोहब्बत में फना नहीं होता, हर कोई मोहब्बत में फना नहीं होता, किसी को चाहना कोई गुनाह नहीं होता। वो पूछती है कि तुम कितना चाहते हो मुझे, वो पूछती है कि तुम कितना चाहते हो मुझे, वो पगली क्या जाने प्यार लफ्जों में बयां नहीं होता। ऐसी ही कई सारी बातें हैं ना जो दिल को छू जाती हैं, और खासकर जब हम बात करते हैं गीतों की, गानों की, बॉलीवुड के उन नगमों की, तो हर वो शब्द कहीं ना कहीं आपके इस एहसासों से जुड़ा रहता है और उस शब्द को आपके एहसासों को बहुत अच्छे से बयां कर जाता है। एक और शेर ऐसे ही याद आया मुझे, मैं आपके साथ साझा कर रही हूं। वफा के सिले कम ही मिले, वफा के सिले कम ही मिले, खुशी के बदले गम ही मिले। एक बात आज तक समझ ना आई, एक बात आज तक समझ ना आई, क्या सबको दिल दुखाने को हम मिले। कार्यक्रम चल रहा है रात सुरमई संगो में श्रेयसी, और अब घड़ी इशारा कर रही है कि रात सुरमई कार्यक्रम को जल्द ही समेटने का समय हो जाएगा। लेकिन समेटने से पहले एक और गाना तो मैं आपके साथ साझा कर ही सकती हूं। वास्तव फिल्म का एक नगमा है, बहुत फेमस है, और दिल कर रहा है वो आपको मैं जरूर सुनाऊं। फिल्म आया गया संजय दत्त और नम्रता शिरोडकर पर, आवाज सोनू निगम की, कविता कृष्णमूर्ति की, बोल सजाए हैं समीर ने, और म्यूजिक दिया जतिन ललित।

फिलहाल तो ये गाना मैं आपके सुपुर्द किए जा रही हूँ ताकि आप इसे सुने, एंजॉय करें, और जल्दी मैं श्रेयसी आपसे फिर मिलूंगी अगले किसी प्यारी सी रात, अगली किसी प्यारे से कार्यक्रम में, जल्दी ही 100.1 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी FM गोल्ड पर। तब तक के लिए गीत एंजॉय करें, नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। भारत और उज्बेकिस्तान ने आपसी संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का फैसला किया है। उज्बेकिस्तान भारत को यूरेनियम की दीर्घकालिक आपूर्ति के लिए रूपरेखा तय करने और दुर्लभ खनिजों के खनन स्थलों पर चर्चा करने के लिए भी सहमत हुआ है। दोनों देशों ने खनन, आयुर्वेद, पर्यटन, आर्थिक और वित्तीय संवाद, व्यापक और रणनीतिक साझेदारी, उच्च शिक्षा और पर्यावरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के बीच द्विपक्षीय वार्ता के दौरान उज्बेकिस्तान में पढ़ाई के लिए जाने वाले भारतीय युवाओं के हित में और सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रमों के लिए कई उपायों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद और अलगाववाद कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर अमल करते हैं।
1: दोनों देशों के बीच करीबी रक्षा और सुरक्षा सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास को दर्शाता है। आने वाले समय में हम दोनों देशों की डिफेंस इंडस्ट्रीज के बीच डायरेक्ट लिंकेज, को प्रोडक्शन और को डेवलपमेंट को बढ़ावा देंगे। हमारा मानना है कि टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म और सेपरेटिज्म पूरे क्षेत्र के लिए गंभीर चुनौती है। इनके विरुद्ध जीरो टॉलरेंस हमारा साझा संकल्प रहा है और आगे भी रहेगा।
0: प्रधानमंत्री मोदी को उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान ओली डराजली दुस्तलिक ऑर्डर भी प्रदान किया गया। ये विदेशी नेताओं को प्रदान किया जाने वाला उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान है। इसके बाद श्री मोदी ने ताशकंद में पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने ताशकंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ ओरिएंटल स्टडीज में महात्मा गांधी सेंटर का दौरा किया। श्री मोदी ने भारतीय विशेषज्ञों और छात्रों से बातचीत भी की। उज्बेकिस्तान की सफल यात्रा के बाद श्री मोदी किर्गिस्तान की दो दिन की यात्रा के लिए बिश्केक पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में शामिल होने के अलावा कई सदस्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 781 हो गई है। आपदा के पांचवें दिन भी 2,500 से अधिक लोग लापता हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि बाढ़ से के बाद नेपाल में अब तक 149 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। पहले लापता करीब 50 भारतीय नागरिकों से फिर संपर्क हो गया है। 275 भारतीय नागरिक अब भी लापता हैं, वहीं 128 भारतीय मूल के लोग भी लापता हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने नेपाल में आई भीषण बाढ़ से प्रभावित लोगों को तत्काल स्वास्थ्य सेवाएं और जरूरी राहत पहुंचाने के लिए दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय स्वास्थ्य आपात कोष से 1,50,000 अमरीकी डॉलर की वित्तीय सहायता प्रदान की है। वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारामन ने देश की सॉफ्ट पावर, वैश्विक समझ और द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने वाली दुर्जय शक्ति के रूप में प्रवासी भारतीय समुदाय की भूमिका की सराहना की है। उन्होंने अमरीका के शिकागो में वाइब्रेंट भारतीय समुदाय कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर वित्त मंत्री ने प्रमुख बाजार के रूप में भारत की क्षमता पर बल देते हुए कहा कि देश स्वायत्त रक्षा प्रणालियों के विकास, परीक्षण और विनिर्माण का वैश्विक केंद्र है। श्रीमती सीतारामन ने शिकागो में चुनिंदा कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और वरिष्ठ नेतृत्व के साथ अलग अलग द्विपक्षीय बैठकें भी की। दुबई में एशिया कप महिला T20 क्रिकेट में भारत ने

3:10 और 55 सेकंड हुए हैं। आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल यानी 100.1 मेगाहर्ट्ज पर इस समय आप सुनेंगे प्रोग्राम हमराही, और आज मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त अर्चना विसारिया। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, कभी किसी से पहली मुलाकात होती है तो न जाने क्यों उसकी सूरत दिल में बस जाती है। न कोई लंबी पहचान, न ढेरों बातें, बस एक मुस्कान, एक नजर और मन कह उठता है इस चेहरे में कुछ तो खास है। कुछ चेहरे खूबसूरत होने से ज्यादा यादगार होते हैं। उन्हें देखने के बाद चेहरे तो बहुत मिलते हैं, लेकिन वो एक चेहरा बार बार याद आता है। तो आइए इसी मासूम सी पसंद और दिल में उतर जाने वाले एहसास के साथ सुनते हैं फिल्म बुढ़ा मिल गया का ये गीत, जिसे आवाज दी है आशा भोसले और किशोर कुमार ने।

सपने भी कितने खूबसूरत होते हैं, इनमें कोई बंदिश नहीं होती, कोई दूरी नहीं होती। मन चाहे तो एक पल में किसी खूबसूरत दुनिया की ओर सैर कराएं, जहां सिर्फ प्यार हो, मुस्कुराहटें हो और किसी का साथ हो। और जब सपनों में भी वही चेहरा बार बार नजर आए, तो दिल की धड़कनें भी जैसे कोई मीठी धुन गुनगुनाने लगती है। शायद मोहब्बत की शुरुआत भी कुछ ऐसी ही होती है। तो आइए सपनों और चाहतों की इसी हसीन दुनिया में चलते हैं, फिल्म बनफूल के प्यारे गीत के साथ, जिसे गाया है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी ने।

0: कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: दोस्तों, मोहब्बत एक ऐसा एहसास है जिसे जितना महसूस करो उतना ही कम लगता है। कभी किसी की मुस्कान दिल को छू जाती है, कभी उसकी आवाज सुकून दे जाती है, और धीरे धीरे पता ही नहीं चलता कि कब किसी की मौजूदगी हमारी जिंदगी का खूबसूरत हिस्सा बन जाती है। सच्ची मोहब्बत में बड़े बड़े वादों से ज्यादा मायने रखता है एक दूसरे का साथ, भरोसा और वो एहसास कि कोई है जो दिल के बहुत करीब है। तो आइए इसी प्यार और अपनेपन की मीठी सी धुन में खो जाते हैं और सुनते हैं फिल्म खून की टक्कर का ये गीत, जिसे गाया है मोहम्मद रफी और आशा भोसले ने।

3:30 और 52 सेकंड हुए हैं। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल यानी 100.1 MHz पर इस समय आप सुन रहे हैं प्रोग्राम हमराही, और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त अर्चना बिसारिया। दोस्तों, कभी कभी प्यार कोई नई कहानी नहीं लिखता, बस पुरानी कहानी के किसी खूबसूरत पन्ने को फिर से खोल देता है। एक मुलाकात, एक नजर, एक एहसास और दिल फिर वही कह उठता है, शायद प्यार आज भी उतना ही खूबसूरत है। तो चलिए याद करते हैं उस प्यार को जो वक्त के साथ कम नहीं हुआ, बल्कि हर मुलाकात के साथ और गहरा होता चला गया। सुनिए फिल्म दयावान का बेहद खूबसूरत गीत, जिसे गाया है पंकज उदास और अनुराधा पौडवाल ने।

जिंदगी का सफर अकेले तय करना भले ही आसान हो, लेकिन जब कोई अपना साथ चलने वाला मिल जाए तो हर मुश्किल रास्ता भी खूबसूरत सा लगने लगता है। एक सच्चा साथी वही है जो सिर्फ खुशियों में नहीं बल्कि उन खामोश पलों में भी हमारे साथ खड़ा रहे जब शब्द कम पड़ जाएं। रिश्ते भी तो इसी साथ से मजबूत होते हैं, एक दूसरे को समझना, संभालना और बिना किसी शर्त के साथ निभाना। कभी कभी दिल की सबसे बड़ी खुशी बस इतनी होती है कि कोई अपना पास हो और हम ये कह सके तुम हो तो ये सफर अच्छा है। तो आइए इसी खूबसूरत साथ और अपनेपन के एहसास के साथ सुनते हैं फिल्म आहूति का ये गीत, जिसे आवाज दी है लता मंगेशकर, मुकेश और मोहम्मद रफी ने।

कहते हैं आंखें दिल का आईना होती हैं, और जब किसी की नज़र किसी खास शख्स से मिलती है तो बिना शब्दों के भी बहुत कुछ कह जाती है। कभी हल्की सी शरारत, कभी चाहत का एहसास, और कभी वो अनकही सी खुशी जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। प्यार की खूबसूरती भी तो यही है कि हर बात कहनी ज़रूरी नहीं होती, कभी एक नज़र ही काफ़ी होती है सामने वाले के दिल तक अपनी बात पहुंचाने के लिए। तो आइए आज की इस खूबसूरत प्रोग्राम में महसूस करते हैं उन्हीं नज़रों की मासूमियत और प्यार भरे एहसास को। फिल्म जेल यात्रा का ये गीत है जिसे गाया है लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने।

दोस्तों, रिश्तों की खूबसूरती सिर्फ साथ होने में नहीं बल्कि उन वादों में भी होती है जो दो दिलों को एक दूसरे से जोड़े रखते हैं। एक सच्चा वादा कभी कभी मुश्किल वक्त में उम्मीद बन जाता है और दूरियों के बीच भी अपनेपन का एहसास दिलाता है। जिंदगी में बहुत से वादे किए जाते हैं, कुछ वक्त के साथ धुंधले पड़ जाते हैं, तो कुछ वादे ऐसे होते हैं जिन्हें दिल उम्र भर संभाल के रखता है। तो आइए आज उन्हीं वादों और मोहब्बत के खूबसूरत एहसास को महसूस करते हैं फिल्म प्रोफेसर प्यारेलाल के इस प्यारे गीत के साथ, जिसे गाया है मोहम्मद रफी और आशा भोसले ने।

मोहब्बत में सबसे खूबसूरत बात शायद यही है कि कोई कहे चलो जहाँ भी जाना है साथ चलते हैं, ना कोई जल्दी ना कोई शिकायत, बस एक दूसरे का साथ और रास्ते भर की मीठी बातें। तो आइए आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का आखिरी गीत, फिल्म फिर वही रात से, और इस गीत को आवाजें दी हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने। आप सुनिए ये प्यारा सा गीत और मुझे यानी अर्चना बिसारिया को अनुमति दीजिए इस कार्यक्रम को समाप्त करने की।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। भारत और उज्बेकिस्तान ने आपसी संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का फैसला किया है। उज्बेकिस्तान भारत को यूरेनियम की दीर्घकालिक आपूर्ति के लिए रूपरेखा तय करने और दुर्लभ खनिजों के खनन स्थलों पर चर्चा करने के लिए भी सहमत हुआ है। दोनों देशों ने खनन, आयुर्वेद, पर्यटन, आर्थिक और वित्तीय संवाद, व्यापक और रणनीतिक साझेदारी, उच्च शिक्षा और पर्यावरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के बीच द्विपक्षीय वार्ता के दौरान उज्बेकिस्तान में पढ़ाई के लिए जाने वाले भारतीय युवाओं के हित में और सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रमों के लिए कई उपायों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद और अलगाववाद कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर अमल करते हैं।
1: दोनों देशों के बीच करीबी रक्षा और सुरक्षा सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास को दर्शाता है। आने वाले समय में हम दोनों देशों की डिफेंस इंडस्ट्रीज के बीच डायरेक्ट लिंकेज, को प्रोडक्शन और को डेवलपमेंट को बढ़ावा देंगे। हमारा मानना है कि टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म और सेपरेटिज्म पूरे क्षेत्र के लिए गंभीर चुनौती है। इनके विरुद्ध जीरो टॉलरेंस हमारा साझा संकल्प रहा है और आगे भी रहेगा।
0: प्रधानमंत्री मोदी को उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान ओली दाराजली दोस्तलिक ऑर्डर भी प्रदान किया गया। ये विदेशी नेताओं को प्रदान किया जाने वाला उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान है। इसके बाद श्री मोदी ने ताशकंद में पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने ताशकंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ ओरिएंटल स्टडीज में महात्मा गांधी सेंटर का दौरा किया। श्री मोदी ने भारतीय विशेषज्ञों और छात्रों से बातचीत भी की। उज्बेकिस्तान की सफल यात्रा के बाद श्री मोदी किर्गिस्तान की दो दिन की यात्रा के लिए बिश्केक पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में शामिल होने के अलावा कई सदस्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विकसित भारत के लिए नशामुक्त युवा अभियान पूरे देश में तेजी से आगे बढ़ रहा है और बड़ी संख्या में युवा इस अभियान में शामिल हो रहे हैं।
1: नशामुक्त भारत के लिए क्या आप कोई पावरफुल स्लोगन बना सकते हैं? क्या हमारे यंग म्यूजिशियंस ऐसे सॉन्ग्स बना सकते हैं जिनमें ड्रग फ्री लाइफ का मैसेज हो? क्या स्टूडेंट्स और थिएटर ग्रुप्स दिल को छू लेने वाले शॉर्ट प्ले लिख सकते हैं जिनमें ड्रग्स के खतरों के साथ साथ उनसे बाहर निकलने का रास्ता भी हो? हमारे देश में बेहतरीन कंटेंट क्रिएटर्स की कमी नहीं है। मेरा आग्रह है कि वे अलग अलग भाषाओं में ऐसा कंटेंट बनाएं जिससे इस दिशा में समाज को मदद मिले।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से 35 लाख महिलाओं को नई शक्ति प्राप्त हो रही है। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 788 हो गई है। राहत और बचाव कार्य जारी है। अब भी 2500 से अधिक लोग लापता हैं। आपदा प्रभावित सभी 8 जिलों से शव बरामद किए गए हैं। राहत और बचाव दल ने कल 5वें दिन भी लापता लोगों की तलाश और फंसे हुए लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए युद्ध स्तर पर अभियान चलाया। इस बीच मध्य नेपाल में त्रिशूली नदी में आई एक और बाढ़ के कारण एक सस्पेंशन पुल बह गया। विदेश मंत्रालय के अनुसार अब तक 149 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। दुबई में एशिया कप महिला टी20 क्रिकेट में भारत ने थाईलैंड को 94 रन से हराकर अपने अभियान की शानदार शुरुआत की है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट पर 159 रन बनाए। शेफाली वर्मा ने 64 रन की शानदार पारी खेली। जवाब में थाईलैंड की पूरी टीम 15 ओवर और 3 गेंद में 65 रन पर सिमट गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: 4:10 और 52 सेकेंड हुए हैं। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल यानी 100.1 MHz पर आपने ट्यून किया है प्रोग्राम अरुणिमा और मैं हूं आपके साथ इस प्रोग्राम में अर्चना बिसारिया। एक बार फिर से आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, जिंदगी सिर्फ अकेले आगे बढ़ने का नाम नहीं है, कभी किसी का हाथ थामना, किसी को हौसला देना और किसी की छोटी सी खुशी में अपनी खुशी ढूंढ लेना भी कामयाबी का हिस्सा है। हम सबकी मंजिलें अलग हो सकती हैं, रास्ते अलग हो सकते हैं, लेकिन एक दूसरे के लिए सम्मान और अपनापन बना रहे तो सफर बहुत ही खूबसूरत हो जाता है। याद रखिए, दुनिया में प्यार सिर्फ रिश्तों में नहीं, व्यवहार में भी दिखाई देता है। किसी के लिए अच्छे शब्द बोलना, मुश्किल समय में साथ खड़ा होना और बिना किसी स्वार्थ के किसी का हौसला बढ़ाना, यही तो असली इंसानियत है।
1: चिक चिक बम बम बम चिक चिक बम।

207 का मतलब सिर्फ किसी के साथ होना नहीं है, किसी के पास होना नहीं है, बल्कि एक दूसरे को आगे बढ़ने की वजह देना है। ऐसे रिश्ते हमें सिखाते हैं कि सफलता सिर्फ मंजिल तक पहुंचने में नहीं, बल्कि उस सफर को अच्छे लोगों के साथ जीने में भी है। तो अपने आसपास के उन लोगों की कद्र कीजिए जिनका साथ आपको बेहतर बनाने की प्रेरणा देता है। और इसी खूबसूरत एहसास के साथ सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों, जिंदगी में हर दिन एक जैसा नहीं होता। सभी कुछ हमारे मुताबिक चलता है तो कभी छोटी सी बात भी परेशानी का सबब बन जाती है। लेकिन मुश्किलें हमें रोकने नहीं बल्कि हमें और मजबूत बनाने आती हैं। ऐसे वक्त में किसी अपने का भरोसा बहुत मायने रखता है। एक सच्चा साथ हमें याद दिलाता है कि हालात चाहे कितने भी उलझे हों, उन्हें धैर्य और समझदारी से सुलझाया जा सकता है। इसलिए जब कोई बात बिगड़ जाती है तो उस वक्त आप घबराइए मत, थोड़ा ठहरिए, सोचिए और फिर एक नई शुरुआत कीजिए, क्योंकि हर उलझन का कोई ना कोई रास्ता जरूर होता है।

दोस्तों, इस समय आप सुन रहे हैं प्रोग्राम अरुणिमा, मेरे यानी अर्चना विसारिया के साथ। जिंदगी की भागदौड़ में हम अक्सर बड़ी बड़ी मंजिलों के पीछे दौड़ते हैं और इसी दौड़ में वो छोटी छोटी खुशियां कहीं पीछे छूट जाती हैं जो कभी हमारे दिल को खास बना देती थी। लेकिन खूबसूरत बात यह है कि सुकून सिर्फ बीते कल में नहीं होता, आज भी हम अपने लिए कुछ पल निकाल सकते हैं। चाय की प्याली, अपनों से बातें, खुली हवा और थोड़ी सी बेफिक्र मुस्कान।

जिंदगी में कभी कभी ऐसा भी होता है कि दिल किसी धुन को पकड़ लेता है और फिर कदम अपने आप उसी दिशा में बढ़ने लगते हैं। यही तो जुनून है, जब कोई सपना आपको भीतर से पुकारे और आप बिना रुके उसकी ओर बढ़ते चले जाएं। हर किसी की राह अलग होती है, मंजिल अलग होती है और सपने भी अलग ही होते हैं। इसलिए ज़रूरी नहीं कि हम वही रास्ता चुनें जिस पर बाकी लोग चल रहे हैं। ज़रूरी है कि हम अपनी पहचान और अपने दिल की आवाज़ को समझें। हाँ, रास्ते में मुश्किलें आएंगी, लोग आपसे सवाल भी करेंगे, लेकिन अगर आपकी मेहनत सच्ची है, इरादा मजबूत है, तो अपने सफ़र पर भरोसा रखिए।

जिंदगी में हम बहुत कुछ कहते हैं, बहुत कुछ सुनते हैं, लेकिन हर बात का असर हमारे साथ लंबे समय तक नहीं रहता। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो वक्त गुजरने के जाने के बाद भी हमारे भीतर गूंजते रहते हैं, कभी सीख बनकर, कभी याद बनकर, और कभी हमें सही रास्ता दिखाने वाली आवाज बनकर। इसलिए बोलते वक्त शब्दों की कद्र कीजिए और सुनते वक्त उनकी सच्चाई को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हमारी कही हुई बात किसी के दिल को हौसला भी दे सकती है और किसी के सफर की दिशा भी बदल सकती है। जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है, लेकिन पीछे छूटे अनुभवों से सीखना भी उतना ही जरूरी है। बीते कल की आवाजों को बोझ मत बनाइए, उन्हें अपनी अगली मंजिल की सीख बनाइए।

दोस्तों, जिंदगी में आगे बढ़ते हुए हम अक्सर बड़ी बड़ी उपलब्धियों के पीछे भागते हैं, लेकिन असली खुशी तो उन छोटे छोटे एहसासों में छुपी होती है जो हमारे दिल को सुकून देते हैं। इसलिए अच्छे लोगों की कद्र कीजिए, खूबसूरत यादों को संभाल कर रखिए और हर रिश्ते में सच्चाई और सम्मान बनाए रखिए, क्योंकि खुशबू की तरह अच्छी यादें भी दिखाई नहीं देती, बस महसूस होती हैं।

दोस्तों, प्यार सिर्फ किसी एक रिश्ते का नाम नहीं, प्यार अपने सपनों से भी हो सकता है, अपने काम से, अपने परिवार से और उस जिंदगी से भी जो हमें हर दिन एक नया मौका देती है। इसलिए दिल में शिकायतों से ज्यादा उम्मीद रखिए, नकारात्मकता से ज्यादा मुस्कुराहट रखिए और हर दिन को पूरे दिल से जीने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब दिल खुश हो तो हर मुश्किल के बीच भी कोई ना कोई धुन जरूर सुनाई देती है। आप सुनिए कार्यक्रम का ये अंतिम गीत और मुझे इजाजत दीजिए इस कार्यक्रम को समाप्त करने की। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। भारत और उज्बेकिस्तान ने आपसी संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का फैसला किया है। उज्बेकिस्तान भारत को यूरेनियम की दीर्घकालिक आपूर्ति के लिए रूपरेखा तय करने और दुर्लभ खनिजों के खनन स्थलों पर चर्चा करने के लिए भी सहमत हुआ है। दोनों देशों ने खनन, आयुर्वेद, पर्यटन, आर्थिक और वित्तीय संवाद, व्यापक और रणनीतिक साझेदारी, उच्च शिक्षा तथा पर्यावरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के बीच द्विपक्षीय वार्ता के दौरान पढ़ाई के लिए उज्बेकिस्तान जाने वाले भारतीय युवाओं के हितों और सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रमों के लिए कई उपायों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद और अलगाववाद कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर अमल करते हैं।
1: दोनों देशों के बीच करीबी रक्षा और सुरक्षा सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास को दर्शाता है। आने वाले समय में हम दोनों देशों की डिफेंस इंडस्ट्रीज के बीच डायरेक्ट लिंकेज, को प्रोडक्शन और को डेवलपमेंट को बढ़ावा देंगे। हमारा मानना है कि टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म और सेपरेटिज्म पूरे क्षेत्र के लिए गंभीर चुनौती है। इनके विरुद्ध जीरो टॉलरेंस हमारा साझा संकल्प रहा है और आगे भी रहेगा।
0: प्रधानमंत्री मोदी को उज्बेकिस्तान के सर्वोच्च सम्मान ओली दाराजली दुस्तलिक ऑर्डर भी प्रदान किया गया। ये विदेशी नेताओं को प्रदान किए जाने वाला उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान है। इसके बाद श्री मोदी ने ताशकंद में पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने ताशकंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ ओरिएंटल स्टडीज में महात्मा गांधी सेंटर का दौरा भी किया। उज्बेकिस्तान की सफल यात्रा के बाद श्री मोदी किर्गिस्तान की दो दिन की यात्रा के लिए बिश्केक पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में शामिल होने के अलावा कई सदस्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 788 हो गई है। राहत और बचाव कार्य जारी हैं। अब भी 2500 से अधिक लोग लापता हैं। आपदा प्रभावित सभी 8 जिलों से शव बरामद किए गए हैं। इस बीच मध्य नेपाल में त्रिशूली नदी में आई एक और बाढ़ के कारण एक सस्पेंशन पुल बह गया है। विदेश मंत्रालय के अनुसार अब तक 149 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। पहले लापता करीब 50 भारतीय नागरिकों से अब संपर्क हो गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन अमरीका के दक्षिण कैरोलिना पहुंची। वे एशविले में होने वाली G20 और इससे जुड़ी बैठकों में हिस्सा लेंगी। इससे पहले वित्त मंत्री ने शिकागो में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। उन्होंने सरकार पर उधार और कर्ज के स्तर से जुड़ी चिंताओं पर बात करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए निर्धारित राजकोषीय घाटे के लक्ष्यों को सफलतापूर्वक हासिल किया है। शिकागो प्रवास के दौरान वित्त मंत्री ने कृषि, रक्षा प्रौद्योगिकी और आतिथ्य क्षेत्र से जुड़े कई प्रमुख अमरीकी उद्योगपतियों के साथ उच्च स्तरीय बैठकें भी की। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा अभियान पूरे देश में तेजी से आगे बढ़ रहा है और बड़ी संख्या में युवा इस अभियान में शामिल हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से 35 लाख महिलाओं को नई शक्ति प्राप्त हो रही है।
1: नशा मुक्त भारत के लिए क्या आप कोई पावरफुल स्लोगन बना सकते हैं? कि हमारे यंग म्यूजिशियंस ऐसे सॉन्ग्स बना सकते हैं जिनमें ड्रग फ्री लाइफ का मैसेज हो? क्या स्टूडेंट्स और थिएटर ग्रुप्स दिल को छू लेने वाले शॉर्ट प्ले लिख सकते हैं जिनमें ड्रग्स के खतरों के साथ साथ उनसे बाहर निकलने का रास्ता भी हो? हमारे देश में बेहतरीन कंटेंट क्रिएटर्स की कमी नहीं है। मेरा आग्रह है कि वे अलग अलग भाषाओं में ऐसा कंटेंट बनाएं जिससे इस दिशा में समाज को मदद मिले।
0: बेल्जियम में पुरुष हॉकी विश्व कप के फाइनल में जर्मनी ने स्पेन को 1-0 से हरा दिया है। इससे पहले अर्जेंटीना ने नीदरलैंड्स को 2-1 से हराकर कांस्य पदक जीता था। दुबई में एशिया कप महिला T20 क्रिकेट में भारत ने थाईलैंड को 94 रन से हराकर अपने अभियान की शानदार शुरुआत की है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट पर 159 रन बनाए। जवाब में थाईलैंड की पूरी टीम 15 ओवर और 3 गेंद में 65 रन पर सिमट गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज.

5:11 हुए हैं दोस्तों, आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। और एक बार फिर से मैं आपको नमस्कार करती हूँ और आपको सुनवा रही हूँ प्रोग्राम भोर सुहानी। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं लता मंगेशकर के गाए फिल्म आखिरी खत के इस गीत के साथ।

लता मंगेशकर को अभी आप सुन रहे थे आखिरी खत में, और अब जो गीत हम आपको सुनवा रहे हैं उसे गाया है आशा भोसले ने। फिल्म का नाम है खुशबू।